नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के 23वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय बजे हैं सुबह के 5:58 और 40 सेकंड। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: सोहनी दिल्ली का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति

0: सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा की विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। प्रस्तुत है कृषि संबंधी कुछ जानकारी खेती की बातें कार्यक्रम के तहत।
3: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, देश की बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या को हल करने के लिए सघन खेती की आवश्यकता है। अब एक ही खेत से एक वर्ष में कई फसल ली जाती है। इसके लिए उन्नत बीज, खाद तथा पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कृषि कार्य जैसे भूमि की तैयारी, बीजों की बुआई, फसलों की सिंचाई, कटाई और भंडारण वगैरह कार्य समय पर न होने से फसल के उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। आज के समय में किसान भी कृषि यंत्रों के उपयोग के महत्व को समझने लगे हैं और अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण कृषि कार्य कम लागत में समय पर निपटाए जा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से कई ऐसे कृषि यंत्र के विकास किए गए हैं जिससे खेती का कार्य सुगम हुआ है। किसान भाइयों, खेतों की तैयारी

लिए मुख्य कृषि यंत्र मिट्टी पलटने वाला हल एमबी प्लाउ है। यह पूर्णतः लोहे का बना होता है। इसमें नीचे लगा फॉल मिट्टी को काटता है और फॉल से लगा हुआ लोहे के मुड़े हुए प्लेट से मिट्टी पलटती जाती है। यह एक प्रकार से जुताई के दौरान एल आकार का कुंड बनाता है।

0: किसान भाइयों, अब बातें कल्टीवेटर की। इस यंत्र का प्रयोग जुताई के बाद खेतों में ढेलों को तोड़ने, मिट्टी भुरभुरी करने और खेत में सूखी घास जड़ों को ऊपर लाने के लिए करते हैं। इस यंत्र का प्रयोग कतार युक्त फसलों में निराई हेतु भी किया जाता है। किसान भाई, जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी और नमी सुरक्षित रखने के लिए उथली जुताई की आवश्यकता होती है। इसके लिए हैरो यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। यह उपकरण अत्यंत उपयोगी है। घास फूस जड़ों वगैरह को भी खेत से साफ करने में यह यंत्र काफी उपयोगी होता है। इस यंत्र के दो प्रकार हैं, तवेदार हैरो और ब्लेड हैरो। ग्रामीण बंधु, अब बातें पडलर की। इस यंत्र द्वारा जुताई के बाद खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर मचाई कार्य किया जाता है, जो कि धान के पौधों की रोपाई हेतु उपयुक्त परिस्थिति बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण भाइयों, अब हम बातें करेंगे रोटावेटर यंत्र की। यह एक विशेष प्रकार का ट्रैक्टर से चलने वाला भारी और बड़ा यंत्र होता है। इस यंत्र में विशेष तरह के कई ब्लेड लगे होते हैं, जो मिट्टी को काटकर ऊपर उठाकर और पलटते हुए आगे चलते आते हैं, जिससे मिट्टी की जुताई और भुरभुरी एक साथ हो जाती है। इस यंत्र के प्रयोग के पश्चात खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, पशु चालित बीज उर्वरक बुआई यंत्र की अपनी अलग विशेषता है। इस यंत्र के द्वारा 3 से 4 कतारों में एक साथ बुआई की जा सकती है। कतारों के मध्य की दूरी को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा खाद और बीज दोनों ही निर्धारित मात्रा में आवश्यकता अनुसार खेतों में गिराए जा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ट्रैक्टर चालित बीज और उर्वरक बुआई यंत्र के द्वारा 7 से 13 कतारों में बुआई की जा सकती है। इस यंत्र के प्रयोग से बीज और खाद भूमि में उचित गहराई पर बोए जा सकते हैं। यह ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंक के साथ जुड़ा होता है, जिसे लाने ले आने तथा खेत में चलाने के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। किसान भाइयों, प्लांटर बीजों की बुआई का एक मुख्य यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग बीजों को प्राय एक निश्चित दूरी पर पंक्तियों में बुआई हेतु किया जाता है। इसमें अलग अलग फसल के बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों तथा स्प्रे किटों का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर चालित रेस्ड बेड सीड्रिल द्वारा क्रमबद्ध रेस्ड बेड और फरों का निर्माण किया जाता है। अधिक वर्षा की स्थिति में अतिरिक्त वर्षा जल को सुगमता पूर्वक खेत से निकालने में यह पद्धति अति उपयोगी है। इस विधि से बुआई करने से फसल में वायु का संचार अच्छा होने के कारण फसल की बढ़वार और उत्पादकता अधिक होती है। साथ ही इस विधि द्वारा मृदा नमी का संरक्षण भी होता है। उर्वरक के सही व्यवस्थापन के कारण उर्वरक उपयोग क्षमता भी बढ़ती है। किसान भाइयों, आज बातें हम कर रहे थे मुख्य कृषि यंत्रों की, जिसके दम पर हम खरीफ फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम से अब मैं दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: कृषि संबंधी कुछ जानकारी अभी आप प्राप्त कर रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। आलेख और वाचन स्वर था प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित जानकारी थी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान।

भरत के साथ आए अयोध्या वासियों से प्रेम पूर्वक मिलकर श्री रामचंद्र ने उनके सारे संताप दूर कर दिए। और निषाद राज के सौभाग्य का क्या कहना, जिसे मुनिवर वशिष्ठ ने लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से गले लगाया। जब उसने दूर से दंडवत प्रणाम किया तो कुलगुरु ने उसे राम सखा का ये सम्मान दिया। श्री राम ने माताओं के समीप पहुंचकर सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में गिरकर उन्हें सांत्वना दी। जो भी हुआ था उसके लिए काल, कर्म और विधाता को उत्तरदायी ठहराया। फिर राम और लक्ष्मण ने अयोध्या से आई ब्राह्मण पत्नियों तथा गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की, गंगा तथा गौरी की भांति उनका सम्मान किया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के चरणों से लिपट गए, ऐसे जैसे भिखारी को अपरिमित संपत्ति मिल गई हो। जब माता कौशल्या के सामने दोनों भाई नतमस्तक हुए तो उन्होंने दोनों पुत्रों को हृदय से लगाकर

उन्हें अपने प्रेमाश्रुओं से नहला दिया। ब्राह्मणों, गुरु, मंत्री तथा सभी माताओं को साथ ले भरत श्री राम तथा लक्ष्मण सहित आश्रम पहुंचे। सीता ने कुलगुरु के चरणों से लगकर मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त किया। सासुओं की उपस्थिति के कारण वो कुछ सहम सी गईं।

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक

0: अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोय नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहां जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन नानक वाणी, आलेख और वाचन स्वर था अनुपमा तिवारी का। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। समय हो चला है मित्रों भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो आइए आराधना कार्यक्रम के तहत हम सुनते हैं कुछ भजन।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों से श्री हनुमान अष्टक। आइए अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे का गाया हुआ भजन, श्री राम भजन।

0: मन्ना डे के गाए इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत आइए सुनवाते हैं युवाओं में बढ़ता काम का तनाव एवं उपचार। डॉक्टर सुजीत प्रसाद से ले गई भेंट वार्ता आकाशवाणी रांची केंद्र के सौजन्य से प्राप्त।
1: मित्र नमस्कार। मित्रों, आजकल देखा जा रहा है कि काम के प्रति लोगों में काफी तनाव दिख रहा है। चाहे हमारे युवा साथी नौकरी कर रहे हों, व्यवसायिक जगत में हों, या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं, उनमें काम के प्रति काफ़ी तनाव है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, और फिर वो अपने आप को तनाव से घिर जाते हैं, और जब तनाव होता है तो फिर अवसाद से वो घिरने लग जाते हैं। आखिर हमारे युवाओं में इस तरह का तनाव क्यों हो रहा है, क्यों उतने काम के प्रति वो तनाव से घिर जाते हैं, और जब ज़्यादा तनाव होने लगता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां भी अंदर आने लगती है। तो युवाओं में इतना तनाव क्यों पैदा हो जा रहा है, और इससे बचने का कौन से उपाय है? क्या हमारी जीवन शैली प्रभावित कर रही है, या हमारा खान पान बिगड़ गया है, या हमारा सोचने के तरीके में परिवर्तन आ गया है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है, और हमारे युवा साथी भी इससे अछूते नहीं हैं। काम काम काम, दिन भर वो काम के प्रति वो लगे रहते हैं, चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम, और ये काम उन्हें तनाव बढ़ा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा?
2: युवाओं में आजकल ये देखा गया है कि स्ट्रेस बहुत ही बढ़ रहा है। जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ ये तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कारण जो हैं, ऐसे तो बहुत कारण होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक बैलेंस जो होना चाहिए काम और अपने पर्सनल लाइफ का, वो एक नहीं रख पाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है कि उनको जो काम कर रहे हैं उनको वर्कलोड बहुत मिल रहा है, ज़्यादा वर्कलोड मिल रहा है, समय कम है, वो एक हो सकता है कारण। तीसरा कि एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वो कैसा है। अगर वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट हम लोग कहते हैं, अगर टॉक्सिक है तो उसमें उनकी एफिकेसी भी नहीं बढ़ पाती है और काम का लोड वैसा ही है, तो फिर अगेन तनाव हो जाती है। उसके अलावा कुछ कुछ है, जैसे लोगों में आजकल के युवाओं में स्पेशली ये देखा गया है कि एक आगे बढ़ने की इच्छा, किसी भी कीमत पे अचीव करने की इच्छा, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें समझना होगा कि सब लोग सब कुछ नहीं पा सकते हैं। अपनी लिमिटेशन हमें जाननी होगी, हम एक हद तक ट्राई करें, अगर वो ट्राई करने में कमी ना करें लेकिन इतना भी ट्राई ना करें कि वो हमारा मेंटल हेल्थ उससे हैम्पर हो जाए, तो वो हमें एक पहचानना होगा कि हमारी लिमिटेशन कहाँ तक है, हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाएगा। दिनचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी तनाव है वो हमारे अच्छी दिनचर्या से वो एटलीस्ट 50-60% कम हो सकता है। अच्छी दिनचर्या जैसे अच्छी नींद लेना, नींद लेने पे जो भी आपकी टेंशन या तनाव है वो लगभग 50% आपका कम जाएगा, 50-60%। कुछ हल्का एक्सरसाइज करना, सही खान पान और सही समय पे लेना, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम रेगुलर उस पालन नियमित रूप से करें तो स्ट्रेस में हमें बहुत कमी रहेगी, और उसके साथ अगर फिर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको है तो आपको फिर किसी पेशेवर से मिलने की ज़रूरत है।
1: क्योंकि काम का बोझ हमारे युवा साथी में इतना है कि वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, और सोने उठने बैठने जागने के तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया है, और खान पान हमारा बिगड़ गया है, और इसके साथ साथ नशे की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है। क्योंकि युवा साथी हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, और जब युवा इस तरह के गर्त में जाएंगे तो फिर देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो युवा साथी कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें? काम तो हमेशा लगा रहेगा, और ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा मंजिल पे जाना, यदि हम सपना ज़्यादा देखते हैं और जब फिर हमारे सपने साकार नहीं होते हैं तो फिर हम अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करने लगते हैं।
2: युवा साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो प्रायोरिटाइज करना होगा कि कितना काम करना है और कितना मुझे अपनी लाइफ को जीना है, क्योंकि एक सर्टेन समय के बाद आप फैमिली में फिर आइएगा, वाइफ बच्चे होंगे, उस समय फिर ये चीज़ें बहुत ही मैटर करेगी। तो अगर शुरू से ही वो इस चीज़ को बना के चले कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना है, तो वो बहुत उनके लिए लाभदायक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काम ठीक है, बहुत वर्कलोड है, दैट इज़ ओके, बट वो वर्कलोड आप घर लेके ना जाएं, बिस्तर पे सोने समय वो वर्कलोड ना ले जाएं। आप ऑफिस छोड़े, बस वर्कलोड वहीं पे छोड़िए, फिर अगले दिन ऑफिस आइए, फिर उसको स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ होता है स्मार्ट वर्क करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई एक काम 5 मिनट में कर सकता है, कोई वही काम को करने में 2 घंटे लगाता है, तो हम कैसे स्मार्टली, कैसे कम टाइम में उसको कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ हम लोग कहते हैं नो कहना। नो मतलब असर्टिवनेस ट्रेनिंग कहते हैं हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में नो कहना, सही समय पे किस रूप में नो कहें। फॉर एग्जांपल आपको बहुत वर्कलोड आपके बॉस दिए जा रहे हैं आपको, तो आपको ना कहना आना पड़ेगा, उनको समझाना होगा, उनको बताना होगा किसी भी तरीके से कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि चुप हो गए और चुप होके जितना काम दे रहे हैं हम लेते जा रहे हैं, उससे आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हैम्पर होगा, बॉस का नहीं। तो एक नो कहने का भी हमें वो सीखना होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल देखा गया है कि इन चीज़ों के कारण युवा, जैसा आपने बताया, नशे की ओर बहुत अग्रसित हो रहे हैं, तो नशा करना इसका उपाय नहीं है, उससे और आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब ही होगा। इसके अलावा जो दिनचर्या है उसे बहुत ही संतुलित रख सकते हैं, सही समय पे सोना, भरपूर नींद लेना, सही समय पे खाना और न्यूट्रिशियस फूड लेना, जो स्वास्थ्य वर्धक खाने वो जितना हो सके नेचुरल चीज़ें आप खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए सुबह शाम घूमें और आपस में बातचीत करें। बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फैक्ट कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपको किसी तरह का तनाव हो रहा है, अगर आपके साथी संगति वाले लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका तनाव बहुत हद तक कम रहा है। इसके साथ साथ कुछ कुछ जिम्मेदारियां तो मेरे ख्याल से ऑफिस या जो एम्प्लॉयर है उनकी भी बनती हैं कि वो ऐसा माहौल तैयार करें जो उनके जो एम्प्लॉई हैं वो लोग करने में, उस माहौल में उनको काम करने में ज़्यादा दिक्कत की परेशानी ना हो।
1: जी डॉक्टर साहब, जमाना मेटेरियलिस्टिक हो गया है, लोग पैसे के पीछे भाग

0: हमारे युवा साथी भी पैसा अधिक कमाना चाहते हैं और फिर पैसे कमाने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और इसका विपरीत प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो क्या कहेंगे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है?
1: नहीं, मैं तो कहूँगा हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो पैसा है। पैसा से हेल्थ आप नहीं खरीद सकते, लेकिन हेल्थ से आप पैसा खरीद सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ ये पुरानी कहावत है, वो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। पैसा रहेगा, हेल्थ नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं पास्ट में कोट करूँ तो दीपिका पादुकोण बहुत ही फेमस एक्टर थी, लेकिन जैसे ही उनको डिप्रेशन हुआ, जो सबको पता है, तो उसके बाद वो कहाँ उसको एंजॉय कर पाई वो लाइफ को। शी वॉज स्ट्रगलिंग विथ, वो डिप्रेशन से स्ट्रगल की हैं, तब उन्होंने फाइट बैक किया है, उन्होंने पेशेवर की मदद ली, फिर वो वापस आए हैं। तो अब उन्होंने फिर उनसे उसने सीखा है उन्होंने कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना, अपना मेंटल हेल्थ कैसे प्रायोरिटाइज करना। इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। जस्ट मुझे एक याद आया कि इतना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस बार की जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका थीम भी यही था कि लेट्स प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। रिलेटेड है इस चीज़, मतलब युवाओं से थोड़ा रिलेटेड है क्योंकि वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सरकार के साथ साथ जो एम्प्लॉयर उनके साथ साथ अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कैसे अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं।
0: ऑफिस के कार्य, दफ्तर के कार्य या आप कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के कार्य को आप घर लेकर नहीं है। यदि आप दोनों को मिक्सअप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। खुश रहना भी एक कला है। खुश कैसे रहें और काम को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें, और जैसा आपने बताया स्मार्ट वर्क,
1: मैं कहूँगा जैसे मैंने बताया स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुशी किन किन चीज़ों में है? मटेरियलिस्टिक खुशी है कि आपको खुशी मिलती है नेचर में, संगीत में, ये सब कुछ कुछ चीज़ें जो इननेट है वो सब में रहती है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक है, खुशी होती है वो आप करें, लेकिन उसके पीछे इतना ना भागें कि आपका वो हेल्थ उसमें ख़राब हो। और नेचुरल चीज़ों का आनंद लें, नेचुरल फूड लें, आप घूमने जाएं बागानों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, नदियों में घूमने जाएं, फिर नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं वहाँ।
2: युवाओं में बढ़ता काम का तनाव एवं उपचार, अभी आप डॉक्टर सुरजीत प्रसाद से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता थी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: सह द्विपक्षीय वार्ताम् करिष्यति सा उत्तर मेसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम् अफ्रीम गाशी इत्येताभ्याम् सह अपि मेलिष्यति तदनन्तरं सा उत्तर मेसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मेसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि सम्बोधयिष्यति उभयदेशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगम् इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ राष्ट्रपतिः सेंट पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोधप्रदर्शनं हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैकशततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः संयुक्तारक्षकायुक्तः अपरायुक्तः उप आरक्षकायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोधप्रदर्शनसमये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकम् हिंसात्मकञ्च आचरणम् प्रदर्शितम् पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहम् कृतवन्तः प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लङ्घनं कृतवन्तः दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः आरक्षकाणां प्रशासकीयवाहनान् च भङ्गं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः येन सार्वजनिकव्यवस्थायाः कृते गम्भीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत् बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः षष्टि आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः ते उक्तवन्तः यत् प्रायः सप्ततिः प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति समुचितविधिप्रक्रिया आरब्धा अस्ति सहैव भारतीयन्यायसंहितायाः प्रासङ्गिकोपबन्धैः अथ अन्यप्रासङ्गिकविधिभिः च एफआईआर प्राथमिकीति पञ्जीकृतमस्ति युक्रेनदेशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ एमवी गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः एकः गम्भीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्धसूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीयनागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान् ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वम् अधोरेखितवान् व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम् प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 49,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का

0: आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत गायन। कलाकार होंगे पंडित सी आर व्यास, आप सुनेंगे राग भैरव बहार। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत आपको सुनवाएंगे चंद गजलें, कलाकार होंगे अशोक खोसला, 7:45 पर। सुबह 8 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए हिंदी समाचार 8, अंग्रेजी समाचार 8:15 पर और प्रादेशिक समाचार 8:30 पर यानी कि 8:30 सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गाने सुबह 8:45 पर अपने स्टूडियो से। 9 बजे सुनेंगे आप हमारा विशेष कार्यक्रम जोहार पलामू। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय 9:30। 10 बजे एक बार फिर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। 10:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत सेहतनामा। 5:29 तक आप विविध भारती के विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेते रहेंगे और साथ ही साथ प्रादेशिक समाचार और समाचारों का भी आप लाभ उठाएंगे। 5:30 पर एक बार फिर से हम उपस्थित होंगे अपने स्टूडियो में कार्यक्रम विवरण के साथ, यानी कि आपको जानकारी देंगे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की।

वको ध्यान, इस पर भी चर्चा होगी। अपर्णा सिन्हा की वार्ता सुनेंगे आप, सड़क दुर्घटना से बचें। 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 6:02 से आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत चर्चा होगी बरसाती सब्जियां और उसमें रोग प्रबंधन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर भी चर्चा होगी और डॉक्टर अखिलेश शाह कृषि विशेषज्ञ चियांकी पलामू से ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। वैकल्पिक खेती के बारे में बातचीत करेंगे संतोष कुमार। पूर्व प्रसारित यह भेंटवार्ता होगी। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी का समय होगा 6:30। इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात होगी बकरी पालन आमदनी का सशक्त माध्यम और इसी कार्यक्रम में सुनेंगे आप डॉक्टर प्रमोद कुमार, आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू से ले गई भेंटवार्ता। पशुओं के चर्म रोग कारण एवं निदान, बातचीत करेंगे संतोष कुमार। फलोद्यान के लाभ, आज की नसीहत के तहत जानेंगे आप जानकारी और आज का मौसम, आज का बाजार भाव भी आप जानेंगे इसी कार्यक्रम में। 6:55 पर हम लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र। 7 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल 7:10 पर। शाम 7:15 पर अपने स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग के तहत फिल्म में गाने खुला आकाश। 7:45 पर इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता मेदिनीनगर का सफरनामा। वार्ताकार होंगे गोकुल बसंत। 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हम शामिल होंगे। 8:15 पर फिल्म संगीत प्रस्तुत करेंगे अपने स्टूडियो से। देशगान सुनवाएंगे आपको 8:30 पर। 8:45 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में। 9:30 आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, विविध भारती के कार्यक्रमों से जुड़ेंगे। और 10 बजे फिर हम आपको सुनवाएंगे रजनीगंधा के तहत फिल्म संगीत अपने स्टूडियो से। 11 बजे हम समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में और 11:10 पर करेंगे हम सभा का समापन। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित।

शाम 5:45 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी प्रस्तुत किया जाएगा। चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में समय के सदुपयोग पर और काग चेष्टा

अभी आप पंडित सी आर व्यास से सुन रहे थे गायन राग भैरव बहार। तबला पर संगत कर रहे थे ओंकार गुलवाड़ी, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वाला वालकर, तानपुरा पर सुहास व्यास और श्रीराम क्षेत्रे। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का राग रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत आइए सुनते हैं अशोक खोसला जी को।

0: और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने

0: वित्त इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के सामरदुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरु मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामेंट
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा। राज्य के सभी वन क्षेत्रों का एक महीने के भीतर टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की एसआईआर अभियान की समीक्षा। कांग्रेस ने मतदाता सूची सुधार की अवधि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज शैक्षणिक संस्थानों में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को 75% उपस्थिति से मिल सकती है छूट। रिम्स गवर्निंग बॉडी में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। रांची समेत 17 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से राज्य में बारिश की कमी घटकर हुई 33%। और धनबाद में पहली झारखंड राज्य लेजर रन चैंपियनशिप संपन्न। मेजबान धनबाद ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान किया हासिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में वन और पर्यावरण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को एक महीने के भीतर सभी वन क्षेत्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण बढ़ाने पर जोर देते हुए पेड़ लगाओ 5 यूनिट फ्री बिजली पाओ योजना का व्यापक प्रचार करने को कहा, जिसके तहत एक पेड़ लगाने पर नागरिकों को 5 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने 22 जुलाई को सभी केंद्रों पर होने वाली चुनाव पाठशाला और बीएलओ बैठक में प्रतिनिधियों की 100% उपस्थिति का आग्रह किया। मतदाताओं से फॉर्म भरने और डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में सहयोग की अपील की गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने रांची में प्रेस वार्ता कर सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर रोक का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पाबंदी को हटाने की मांग का भरोसा दिया। इसके अलावा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर एसआईआर की समय सीमा 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया है। पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि कई व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से बड़ी संख्या में लोग इस प्रक्रिया से छूट गए हैं।
2: हम सबों ने कहा कि भाई आप 15 दिन का और समय दें ताकि एक भी वोटर या जो डिजिटाइजेशन है उससे वंचित ना हो, क्योंकि अभी वर्षा का समय है, खेती प्रधान है, 80% लोग या कृषि पर निर्भर करते हैं, प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी है।
1: राज्य कैबिनेट की बैठक आज शाम 3 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से अदालत के आदेशों के आलोक में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन वेतन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। रिम्स में आज गवर्निंग बॉडी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। रिम्स के अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नए डॉक्टरों की बहाली जैसे अहम मुद्दे पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
3: कुछ प्रोजेक्ट का यहाँ पे इनोग्रेशन होना है, डिजिटल मेमोग्राफी है जिसकी सुविधा मिलने वाली है, और सेंट्रल लैब जो ऑलरेडी चल रहा है लेकिन उसका विधिवत उद्घाटन किया जाना है। 1400 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल सेंटर है। साथ ही साथ पूरा कैंपस बीएसएनएल के द्वारा वाईफाई जोन कर दिया गया है, और इन सारे प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन होना है।
1: खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में कल एक दर्दनाक हादसे में दो स्कूली छात्रों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि सात अन्य छात्र घायल हो गए। कोटेक सेरा स्थित मौसीबाड़ी के समीप लंच ब्रेक के दौरान छात्र एक रथ को घुमाने का प्रयास कर रहे थे, तभी वे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। घायल छात्रों का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्सेंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्सहैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा YouTube चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रामगढ़ के कुजू मुरपा में पार्टी इकाइयों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को आगे लाने के लिए नेतृत्व के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। महतो ने वर्तमान सरकार पर विस्थापन नीति और रोजगार के झूठे वादे करने का आरोप लगाया।
4: कोई योजना का कोई स्वरूप नहीं और कोई योजना कल्याणकारी के नाम पर लोगों के हित में निरंतर चलने वाली कोई योजना इनकी नहीं, बल्कि इनकी योजनाओं के में जनता को छलने की बू आती है और ये केवल योजनाओं के माध्यम से छलने का काम कर रहा है।
1: चाईबासा की अदालत ने टोंटो थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या के दोषी जमादार सिरका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस द्वारा पेश वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी पर दो अलग अलग धाराओं में आजीवन कारावास और कुल 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोडरमा पुलिस ने 8 जुलाई को हुई मोटरसाइकिल डिक्की तोड़कर जेवरात चोरी मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उड़ीसा के जाजपुर से 2 आरोपियों और रेकी करने वाली एक महिला को पकड़ा है।
5: हमने भद्रक और जाजपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, राजू दास और धनराज प्रधान। राजू दास की जो पत्नी है ट्विंकल दास, वो भी इस मामले में रेकी में इन्वॉल्व थी और वो कोडरमा रेलवे स्टेशन पे ही रह रही थी सारे सामान के साथ जो चोरी की गई थी। हमने ट्विंकल दास को भी अरेस्ट कर लिया। हमने इस मैटर में 100% रिकवरी कर ली है। ये जो इनकी गैंग है ये ओडिशा के 6 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है और ये पूरे इंडिया में घूम घूम के इसी एमओ के साथ ऐसे घटनाओं को कारित करते हैं।
1: मौसम विभाग ने राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा समेत राज्य के 17 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आम लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।

0: राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से बारिश की कमी घटकर अब 33% रह गई है। रांची में डुरंड कप 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात और बिजली पानी जैसे व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मैच के लिए कल से मोरहाबादी स्टेडियम के 12 काउंटरों से रोजाना निःशुल्क प्रवेश पत्र बांटे जाएंगे।
1: सभी लोग आके मैच का आनंद उठाए। टिकट्स का शुल्क नहीं है, लेकिन टिकट लेना आवश्यक है। 22 तारीख से काउंटर्स लगेंगे, सभी तैयारियां, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गए और जितने भी वीआईपी मैनेजमेंट और जितने फोर्स के लोग आ रहे हैं उन सभी का हम लोगों ने सभी विभागों के साथ मिलकर तैयारी लगातार कर रहे हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है।
0: धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली झारखंड राज्य लेजर रन चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। 12 जिलों के 170 खिलाड़ियों में से मेजबान धनबाद ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। समापन पर जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने विजेताओं को ट्रॉफियां देकर सम्मानित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने खूंटी में करंट से 2 छात्रों की मौत और 7 के घायल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जेपीएससी यूपी में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी झारखंड में करा रही भर्ती परीक्षाएं। प्रभात खबर ने लिखा है, शहर में जमीन भवन लेना हुआ महंगा, रजिस्ट्री के लिए देना होगा 10% अतिरिक्त सरचार्ज, ये राशि नगर निकायों को मिलेगी। हिंदुस्तान के शब्द है, वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई पर शीर्ष कोर्ट की मुहर। दैनिक जागरण लिखता है, कल से मिलेंगे डुरंड कप के मुफ्त टिकट, 26,000 से अधिक दर्शक देखेंगे मुकाबला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा। राज्य के सभी वन क्षेत्रों का एक महीने के भीतर टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की एसआईआर अभियान की समीक्षा। कांग्रेस ने मतदाता सूची सुधार की अवधि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की। राज्य कैबिनेट की बैठक में आज शैक्षणिक संस्थानों में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को 75% उपस्थिति से सकती है छूट। रिम्स गवर्निंग बॉडी में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। रांची समेत 17 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। मानसून की सक्रियता बढ़ने से राज्य में बारिश की कमी घटकर हुई 33%। और धनबाद में पहली झारखंड राज्य लेजर रन चैंपियनशिप संपन्न। मेजबान धनबाद ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहला स्थान किया हासिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, FM 103 MHz पर। मित्रों, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले तमाम साथियों का स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार।

अभी हमने आपको सुनवाया महान संगीतकार सज्जाद हुसैन के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी के लिखे हुए गाने को। स्वर दे रही थी सुरैया और फिल्म थी रुस्तम सोहराब। आज हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार सज्जाद हुसैन को और साथ ही हम अब कुछ गाने सुनवाएंगे आपको महान गीतकार आनंद बख्शी के लिखे हुए। आइए सुनते हैं अगला गाना।

सुहाना सफ़र। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। गीत के बोल आनंद बख्शे के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए सुनवाते हैं अगला गाना।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्श के लिखे गाने को स्वर दे रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथी। फिल्म थी आन मिलो सजना। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, समय हो चला है अब हमारे विशेष कार्यक्रम जोहार पलामू का, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जोहार पलामू।

जोहार नमस्कार। कभी हार न मानने की जिद ही एक दिन आपकी जीत का कारण बनती है। जी हाँ, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य, परिश्रम से रास्ते आसान हो जाते हैं और मंजिल मिल जाती है। बस हौसला बनाए रखने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए अब मौसम का भी हाल आपको बता देते हैं। यूँ तो मौसम सुहावना हो चला है, लेकिन लगातार बारिश से जनजीवन तो प्रभावित होता ही है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई ज़िलों में भारी वर्षा हो सकती है और इसलिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कई ज़िलों में रुक रुक कर वर्षा होने की संभावनाएं हैं और कई ज़िलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वर्षा होने से कई जगहों पर तापमान में गिरावट तो आ ही गई है और कई जगह उमस भरी गर्मी का भी एहसास हो रहा है। जी तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम। कहीं होगी झमाझम बारिश तो कहीं पड़ेगी बौछारें। किसी ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, बादलों को आता देखकर मुस्कुरा लिए, बादलों को आता देखकर मुस्कुरा लिए, कुछ ना कुछ मस्ती में गुनगुना लिए। कि आ भी जाओ अब मौसम सुहाना हो चला है, तुम्हारे संग संग इसका लुफ्त जो उठाना है। कह दो बादलों से ठहर जाए वो कुछ पल, कह दो बादलों से ठहर जाए वो कुछ पल, इस पल को जी भर कर जी लेना है। जी आइए सुनते हैं खूबसूरत सा।

मित्रों, पलटते हैं इतिहास के पन्ने और डालते हैं एक नज़र आज की प्रमुख घटनाओं पर, यानी कि आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज प्रमुख घटनाओं पर। आज ही की तारीख को सन 2007 में हैरी पॉटर सीरीज की आखिरी किताब रिलीज हुई थी। नासा का आर्बिटर अटलांटिक धरती पर वापस लौटा था आज ही की तारीख को। इसी के साथ अमेरिका ने 135 मिशन के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया था। रूस के वोस्टोक स्टेशन पर तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। धरती के किसी हिस्से पर ये अब तक का सबसे कम तापमान है। सन 1983 में आज ही की तारीख की बात है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आज ही की तारीख को सन 1988 में। हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध लेखक और गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ था आज ही की तारीख को, और उन्होंने फिल्मों के लिए लगभग 3000 से भी ज़्यादा गाने लिखे थे जी। तो इस तरह की कुछ प्रमुख बातें हैं जो आज की तारीख में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और सन 1960 में 21 जुलाई यानी आज ही की तारीख को पहली बार किसी महिला ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। इस दिन श्री मावो भंडार नायके सिलोन की प्रधानमंत्री बनी थी। और आज ही की तारीख को सन 1884 में लॉर्ड्स के मैदान पर पहला टेस्ट खेला गया था। क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर आज ही के दिन सन 1884 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मैच को इंग्लैंड ने लॉर्ड्स हैरिस की कप्तानी में 1 इनिंग और 5 रन से जीता था जी। और आज ही की तारीख को 138 साल पहले देश में थिएटर की शुरुआत हुई थी। कोलकाता के स्टार थिएटर में हुआ था नाटक दक्ष यज्ञ का मंचन आज ही की तारीख को। कोलकाता के स्टार थिएटर की शुरुआत हुई और इसे भारत का पहला सार्वजनिक थिएटर माना जाता है। 21 जुलाई सन 1883 को इस थिएटर में दक्ष यज्ञ नामक नाटक का मंचन हुआ था और इस नाटक को गिरीश चंद्र घोष ने लिखा था और उन्होंने ही इसमें मुख्य किरदार भी निभाया था। इस थिएटर को गिरीश चंद्र घोष, विनोद निदासी, अमृतलाल बसु और कई अन्य लोगों ने मिलकर खोला जाता था और इसके लिए ज़रूरी पैसा गुरमुख रॉय ने दिया था। तो इस तरह से थिएटर की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं आज की तारीख में। और चलिए एक बार रुख करते हैं फिर गीत संगीत की ओर।

मित्रों, बीते दिनों की यादें कभी भुलाए नहीं भूलती हैं, चाहे वो बचपन की बातें हों या फिर कभी और जो भी पल बीत जाते हैं वो हमेशा किसी न किसी रूप में तो याद रहते हैं। और जब भी हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं तो कुछ पल हमारे सामने मुस्कुराते हुए तो कुछ नम आँखों के साथ दिखाई देते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जो हर पलामू कार्यक्रम में। और आइए अब बातें कर लेते हैं सेहत के। बरसात के मौसम में नमी और पसीने के कारण त्वचा पर बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं जी, और इससे रिंग वॉर्म, एथलीट फुट की खुजली और एक्जिमा जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। त्वचा संबंधी कई समस्याएं होती हैं, त्वचा पर लाल चकते पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो इसके बचाव के लिए हमेशा त्वचा को साफ सुथरा रखें, सूखे ढीले सूती वस्त्र पहनें और भीगने के तुरंत बाद आप साफ पानी से नहाकर शरीर को अच्छी तरह से सुखा लें। यानी शरीर में नमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा रहने से खतरा बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन, ये दांत और खाज है, यह नमी वाले स्थानों पर होता है और इसमें त्वचा पर लाल, गोल और अत्यधिक खुजली वाले चकते पड़ जाते हैं, जो काफ़ी परेशान करते हैं। पैरों की उंगलियों के बीच में नमी रहने से फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे एथलीट फुट कहा जाता है। इसमें त्वचा छिलने लगती है और जलन, खुजली होती है, काफ़ी तकलीफ होती है। एक्जिमा, नमी और बारिश के संपर्क में आने से त्वचा का रूखापन और लालिमा बढ़ सकती है। और पसीने नमी के कारण रोम क्षेत्रों में बैक्टीरिया या फंगस हो जाते हैं, जिससे त्वचा पर लाल दाने या फुंसियाँ निकल आती हैं, जिसमें खुजली होती है और पानी भी, कभी कभी पानी भी उससे रिसने लगता है। तो इस तरह से कई समस्याएं हैं जो बरसात के मौसम में त्वचा संबंधी हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप भीग जाएं तो घर आकर शरीर को तुरंत साफ पानी से पहले नहाएं, उसके बाद शरीर को साफ सुथरा करें, अच्छे से पोछें और फिर आप उसमें अच्छा, कोई जो भी आप तेल का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करें। नारियल का तेल लगाएं तो सबसे बेहतर है। और इसके लिए कुछ और भी घरेलू उपाय हैं कि बरसात में भीगने पर तुरंत सादे पानी से अवश्य ही नहा लेना चाहिए और शरीर को सुखा लेना चाहिए। पसीने वाली जगहों पर आप कुछ जो आप पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो आप करें। इसके साथ ही यदि आप मोजे पहनते हैं हमेशा, तो मोजों को रोज़ बदलें, उसे साफ़ सुथरा रखें। गीले या नम जूते मोजे को पहनने से बचें, इससे आप की जो पैरों से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होंगी। खुजली और रैशेस को शांत करने के लिए आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नारियल का तेल, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से त्वचा को राहत देते हैं। और यदि समस्या गंभीर है तो फिर आप चिकित्सक से सलाह लीजिए और उनके बताए अनुसार आप अपना इलाज करवाइए, क्योंकि यह समस्या जो त्वचा पर चकते पड़ते हैं, खुजली होती है, कभी कभी काफ़ी गंभीर रूप ले लेती है, क्योंकि त्वचा में जलन, खुजली, इससे काफ़ी परेशानी होती है। और यदि बच्चों में हो जाए तो फिर समस्या और भी बढ़ जाती है। इसलिए यदि ऐसा है तो आप अपने विशेषज्ञ से मिलिए, उनकी सलाह के अनुसार इलाज करवाइए और सावधानी बरतिए, क्योंकि हर मौसम का अपना एक अच्छा और उसका दूसरा पहलू भी होता है जो नुकसान भी पहुँचाता है। तो बस सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हम सावधानी से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसका ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मौसम का आनंद लेते रहें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिया जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
3: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
3: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर

0: यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं।
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया।
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है। प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
9: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
4: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
8: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
4: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
9: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
4: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
8: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
5: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
8: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
5: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
10: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी में बैठ कर
11: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा
10: रहा है?
5: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
12: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त

0: भक्त जितनी बार हंस को बुलाते वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, घबराओ मत।
0: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
6: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

0: देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
1: पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: वत्स श्वेत केतु।
1: आज्ञा दत्त,
0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
0: श्वेत केतु।
1: जी पिताजी।
0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?

0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है
1: जीतात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है
1: जी। पिताजी,
0: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे दूर है।

0: वत्स श्वेतकेतु।
1: जी तात।
0: क्या तुम जानते हो, हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: राह पलता।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आपसी संबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,000

0: 116. Sectorally, IT, cement and metal stocks bucked the weak broader trend. Auto and FMCG stocks also traded marginally higher. In hockey, the Indian sub-junior men's and women's teams made a winning start to their respective campaigns at FIH Youth Hockey's Asian Championship 2026 in Muscat, Oman yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है.
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार.
1: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
2: जी,
1: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा. अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है. सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है
2: जी.
1: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है. तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है. दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है. सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है
2: जी. बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर
2: जी जी,
1: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल.
2: क्या बात,
1: बाजीराव मस्तानी से
2: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है.

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एब्नॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा उनको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा
0: अरे इसलिए मत
1: और
0: चेकअप
1: इसे चेकअप मत
0: कराओ
1: करवाओ,
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है।
0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है, लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी
1: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
0: जी
1: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं।
0: जी
1: लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
0: जी
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं।
0: ओ
1: क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं।
0: जी
1: सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी जी
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
0: जी जी
1: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि
0: जी
1: हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाएं, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा हो के किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
0: बिल्कुल।
1: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डायट्री रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
0: जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
1: ये मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
0: बिल्कुल।
1: एट द सेम टाइम एवरीपैथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक। बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो, एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है। बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है। ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है।
0: बिल्कुल।
1: सो इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
0: जी। इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
1: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट, जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
0: जी, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुने।
1: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इंपॉर्टेंट।
0: जी,
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
0: जी,
1: सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो
0: जी
1: समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इंप्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है।
0: जी
1: सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए
0: जी
1: और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
0: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते
1: जरूर।
0: हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है, वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है,
0: जी हाँ,
1: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है।
0: जी
1: महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग
0: जी
1: कि जरूरी है या जरूरी नहीं है,
0: जी
1: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है,
0: जी
1: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है, और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है।
0: जी
1: इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
0: जी तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
1: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रिज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है।
0: जी
1: सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
0: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए।
1: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयां नहीं थी, अभी
0: जी
1: दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
0: जी बिल्कुल
1: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
0: जी
1: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी जी
1: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
0: क्या
1: है।
0: बात है।
1: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है।
0: जी
1: लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
0: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है
1: आई
0: या
1: थिंक
0: लाइलाज?
1: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
0: जी
1: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है,
0: जी जी
1: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है,
0: अच्छा
1: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
0: जी
1: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में ही डिजीज रहता है, तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं,
0: जी
1: जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी
1: बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
0: डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
1: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
0: चंचल चितवन
1: चंचल चितवन,
0: बेहतरीन
1: बहुत
0: गाना
1: अच्छा
0: है
1: गाना है।
0: जी, मुकेश की आवाज में भी
1: मुकेश
0: है
1: की आवाज
0: और
1: में और लता
0: लता
1: जी
0: जी
1: की
0: की।
1: आवाज में भी है,
0: जी
1: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज
0: जी
1: में
0: जी
1: सुनेंगे।
0: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं।
1: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो
0: जी
1: हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल
1: पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
0: जी
1: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज क्या है।
0: जी
1: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई, एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है,
0: जी
1: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
0: जी जी
1: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
0: जी जी।
1: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है
0: जी।
1: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकेंड लाइफ मिलती है।
0: जी।
1: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
0: जी।
1: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
0: जी जी।
1: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है।
0: जी जी।
1: सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है
0: जी।
1: और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
0: जी जी जी।
1: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या

0: में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है।
1: जी
0: किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी
0: सबसे बड़ी समस्या

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड.
0: जी
1: हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड.
0: जी
1: हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से एक्सपर्ट के पास
0: की शुरुआत करते हैं पंकज उधास की आवाज से।

0: छाया गांगुली के स्वर में आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत। संगीत था जयदेव का, ये फिल्म का नाम था त्रिकोण का चौथा कोण। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: ये आशा भोसले की आवाज है, संगीतकार जयदेव।

0: खीरे।
1: मन्नाडे के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, रचना थी श्याम सागर की।
2: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
3: वो तेरे प्यार का।
2: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
4: मुबारक हो सबको समाए सोहा।
2: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
5: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
2: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
6: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
2: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
4: बेचारा
6: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
5: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
6: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
5: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
7: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
6: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
5: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
6: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
8: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

पीनाज मसानी की आवाज थी, मुमताज राशिद का कलाम था। पेश है भूपिंदर की आवाज में ये गजल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एसएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आज का ये पूरा कार्यक्रम जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के नाम।

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है यादों की महफिल, फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज का ये पूरा कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के नाम है। सुनिए मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: वही घिसा पिट।
1: विविध भारती पर आ रहा है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं, दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

0: दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: संबंधित मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये तथा घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज एसएस प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi said all those involved in the paper leak case have been arrested, with 13 accused currently lodged in jail.
4: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
5: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
4: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
3: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. Referring to the ongoing monsoon session of Parliament, the Prime Minister said the NDA will play a constructive and positive role in ensuring the passage of bills. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. over the opposition uproar on various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the House took up motions for election to different committees of the Parliament amid opposition uproar. Presiding Officer Sandhya Ray urged the members to return to their seats and allow the House to function smoothly. Despite her appeal, the opposition members came to the well with placards and carried on sloganeering over NEET and student protests. It led to adjournment of the Lok Sabha till 2 p.m. When the Rajya Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan appealed to opposition members to go to their seats and allow the House to function, but the opposition did not pay heed to his advice. Amid uproar, the Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. India today summoned the Russian chargé d'affaires Vladimir Lalanov following the attack on the commercial vessel MV Golden Leo on the 19th of this month, which resulted in the tragic loss of four Indian lives, conveying grave concern and unequivocal condemnation of the attack. The Ministry of External Affairs said such attacks undermine the safety, security and stability of international maritime commerce. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravalli Hills and ranges. Earlier in May this year, the Supreme Court had constituted a high-powered committee to examine matters related to the Aravalli Hills and ranges besides ancillary issues. The committee will submit its comprehensive report to the Apex Court before the 31st of next month. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravali@gmail.com within 3 weeks. In Sikkim, search and rescue operations are underway to safely evacuate people trapped inside the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project at Samardung in Namchi district. Senior Superintendent of Police of Namchi district said 9 bodies have been recovered by the rescue team so far. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah spoke with Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamangole today. The Prime Minister expressed grief at the loss of lives. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund that would be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. U.S. President Donald Trump has warned Iran of massive retaliation, saying that Tehran would pay many times. His warning came after 3 American soldiers were killed recently, 2 in Jordan and 1 in Iraq. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% down in afternoon trade today. The Sensex shed 217 points to at 77,491, while Nifty dropped 60 points to 24,179 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली डेंगू वैक्सीन के व्यावसायिक विपणन को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 4 से 60 वर्ष के लोगों को दी जाएगी खुराक। रांची के नामकुम अंचल की करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले में एसीबी एक्शन में। तत्कालीन अंचल अधिकारी सहित अन्य पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत पीपरवार में सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 11.5 टन अवैध कोयला जब्त। अवैध खनन पर अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर। बाबा वैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे की बड़ी सौगात। आगामी 29 जुलाई से देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ के बीच चलेंगी कई विशेष ट्रेनें। और रांची के खेलगांव में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज खिताबी मुकाबला। विभिन्न प्रमंडलों के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन में आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए शासनाध्यक्ष बनने पर बधाई दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े संकल्प को दोहराते हुए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देने की बात कही है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूएनडीगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है, जिसे बिना किसी पूर्व रक्त जांच के लगाया जा सकता है। जापानी कंपनी टाकेडा द्वारा निर्मित इस वैक्सीन को पहले ही 42 से अधिक देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हरी झंडी मिल चुकी है। रांची में 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा कल जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगा। युवा मोर्चा के नेताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है।
2: हमारे लाखों युवाओं ने रात दिन मेहनत करके परीक्षा में शामिल हुआ और उनके मेहनत को बेकार करने का काम किया, साथ ही साथ झारखंड के भविष्य के में आने वाले समय में हमारे युवाओं को अंधकार में ढकेलने का काम किया है। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में 22 जुलाई को हजारों की संख्या में हमारे युवा कार्यकर्ता जेपीसी कार्यालय घेराव करने के लिए जाएंगे।
0: झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रांची के नामकुम अंचल के करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले की जांच तेज कर दी है। एसीबी ने तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉक्टर श्वेता वर्मा और डीलिंग असिस्टेंट दीपक कुमार सहित अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर वर्ष 2012 से 2015 के बीच सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर डुंडू गांव की करीब 1.25 एकड़ जमीन पर फर्जी दूसरी जमाबंदी बनाने का आरोप है। कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सीआईएसएफ ने खलारी के पीपरवार क्षेत्र से करीब 11.5 टन अवैध कोयला बरामद किया है। सीआईएसएफ अधिकारियों के अनुसार बरामद कोयला सीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया गया है और अब अवैध खनन पर लगाने वाले लगाम के लिए ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों से लगातार निगरानी रखी जाएगी। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल विशेष मेमू डेमू और

0: पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करेगा। आगामी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक जसीडीह बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ और देवघर के बीच कुल 33 फेरों के साथ कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश की @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह में 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता में इस बड़ी कामयाबी की जानकारी देते हुए शेष बचे नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की पुरजोर अपील की है।
1: नक्सली जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनसे हम लोग अपील करते हैं, नक्सल के रास्ते को आप छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए झारखंड सरकार की जो पुनर्वास आप समर्पण नीति है, नई दिशा नई पहल के तहत आप आएं। गिरिडीह जिला में जितने भी नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं उनको जो आर्थिक लाभ मिलना है वो भी मिल चुका है।
0: सरायकेला खरसावा के गम्हरिया कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संकुल अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कार्यक्रम के तहत किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक पंकज सेठ ने बताया कि वर्ष 2026-27 के तहत 125 चयनित किसानों को मूंगफली के उन्नत बीज और आवश्यक कीटनाशक बांटे जा रहे हैं।
2: 125 किसानों को उन्नत मूंगफली खेती के लिए उसका प्रत्यक्षण के लिए मूंगफली का प्रभेद K18-12 का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बीज मुहैया करा रहे हैं और जिसके तहत हम लोग उनको खाद में सल्फर दे रहे हैं और बीज को उपचार करने के लिए बवेस्टिन दे रहे हैं और इमिडाक्लोरपीड दे रहे हैं जो इंसेक्टिसाइड है। साथ ही उनको प्रशिक्षण के माध्यम से बता रहे हैं कि मूंगफली की खेती क्यों जरूरी है, मूंगफली की खेती को कैसे करना है।
0: भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम केंद्र के अनुसार 22 और 23 जुलाई को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। रांची के खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित 62वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। 4 दिनों के रोमांचक मुकाबलों के बाद आज अंडर 15 बालक वर्ग में कोल्हान और संथाल प्रमंडल, जबकि अंडर 17 बालिका वर्ग में दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के बीच खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली डेंगू वैक्सीन के व्यावसायिक विपणन को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 4 से 60 वर्ष के लोगों को दी जाएगी खुराक। रांची के नामकुम अंचल के करोड़ों रुपए के कथित जमीन घोटाले में ACB एक्शन में, तत्कालीन अंचल अधिकारी सहित अन्य पर दर्ज हुई प्राथमिकी। जीरो कोल लीकेज अभियान के तहत पीपरवार में CISF की बड़ी कार्रवाई, 11.5 टन अवैध कोयला जब्त। अवैध खनन पर अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर। बाबा बैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं के के लिए पूर्व रेलवे की बड़ी सौगात। आगामी 29 जुलाई से देवघर, जसीडीह और बासुकीनाथ के बीच चलेंगी कई विशेष ट्रेनें। और रांची के खेलगांव में चल रही 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज खिताबी मुकाबला। विभिन्न प्रमंडलों के बीच होगी भिड़ंत।

0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: शादी कराते थे, खूब मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सादे सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है, जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए। और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियां गाना गाती थी, पिया मेहंदी मगाए दे मोती झील से, जाए के साइकिल से। ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है। भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्मदिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां लिख भेजी हैं। अब देखते हैं कि हमारे एक श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ओ मेरे शाहे खुबा। भई गजब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पापा की लाई हुई उस गुड़िया से शुरू हो रही है, जो भावनाओं से जुड़ी हुई पापा की गुड़िया कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, समय कितनी जल्दी हाथों से निकल गया। हम अपनी बेटी को उसी गुड़िया के रूप में देखते हैं जो जल्दी ही विदा होने वाली है, ये सोचकर आंखें भर आती हैं। और वो पापा भी अपनी गुड़िया की विदाई के कामों में व्यस्त हो गए हैं, जो कभी उसके लिए गुड़िया लाया करते थे। अब देखिए ना, एक गाना कितने सारे श्रोताओं के मन की भावनाओं पर दस्तक दे रहा है, कितने सारे श्रोताओं की आंखें नम कर रहा है, कितने श्रोताओं के जज्बात से जुड़ गया है ये गाना, उनमें से एक तो हम भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भावों को बदलते हैं और जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार मोहब्बत की दहलीज पर हमारा मन पहुंचता है। बताइए फिल्म का नाम, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम बूझना है आपको।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 जरूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे। और कजरी गाई जाती थी, चैती गाई जाती थी, है ना? तो कौन सी कजरी, कौन सा गाना अगर याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमारे बहुत सख्त थे, बाहर का खाने से रोकते थे, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया करते थे माताजी से, और मांग पर भुनी मूंगफलियाँ दिलाया करते थे। बस स्मृतियों में ही सब पल है और जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जितना हो सके डांट मार से नहीं प्यार से समझाने में ही समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है, जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी, जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती हैं और अब मोबाइल है। अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे। बड़ी मान मनोवल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया। और आज बेटे, नाती, पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आँखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था, याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी, गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है, तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार दिल को सुकून देने वाला ये गाना था। अब हमने जो झूले की बात पूछी थी, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ पारिवारिक परंपरा होती थी, बच्चों के लिए मोटे कपड़ों का झूला छत की कड़ी से बांधकर उसमें छोटे बच्चों को सुलाते थे, लकड़ी का पालना वर्जित था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दो बेटियां हैं, दोनों का विवाह हो चुका है, मैंने करीब 10 वर्ष तक उन्हें चॉकलेट नहीं खाने दिया, और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाक्या बताया कि उसकी एक सहेली के दाँत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कैल हो गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें पापा का प्यार धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम हम सफर का साथ खट्टे मीठे अनुभव सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है, ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है जिसमें पिता का निश्चल स्नेह हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है, यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूर्त की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है, और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना ले ना लाना पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो कौन है हीरोइन, त्वरित जवाब दीजिए क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहाँ तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल ही गए हैं, बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियाँ। कहानियाँ सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए।

उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हो। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब तो रेत देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मजा ही ना आए। मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है। अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हों तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झुलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है और बचपन के तोहफों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब ज़रा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही। ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी? सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें थीं, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलेन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियां ज़रूर याद आ शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हाँ उनकी कहानियां ज़रूर याद।

मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा, शुद्ध और साफ उच्चारण आवाज में सुनने को मिलेगी आपकी बातें। क्या बात है भाई। आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के ज़माने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं। अब सुनिए ये गाना, ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है, हमारी आज की इबारत में ये शब्द है। तो सुनिए ये गाना और बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको पूछना है, जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोहराबाई अंबाले वाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधु की, संगीतकार नौशाद। और ये हमारा सवाल था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है। रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना, हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष की हूँ। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया। और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहाँ पर

लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार जरूरी है। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयां तो आगे निकल गई हैं। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: has been disrupted due to landslides at Shelkhar and Samdho in Kinnaur district in Lahaul Spiti. Vehicular movement has come to a halt after a link road was washed away by flash flood in the Jahalma Nala. In Shimla district, 16 link roads in the Theog subdivision have been blocked. In Chamba district, the Lahadu Nurpur main road has also been blocked following a major landslide at Tikkar Galadhar. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
1: Meanwhile, the Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Muzaffarabad for today. IMD also issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, East, Madhya Pradesh, Goa, Madhya Maharashtra and parts of Northeast India for the day. The Central Drugs Standard Control Organization has granted marketing authorization for India's first dengue vaccine, the attenuated dengue vaccine Q-Denga-R, to strengthen national dengue prevention efforts. This is the first dengue vaccine approved in the country for the prevention of dengue disease. The vaccine is approved for the prevention of dengue disease in individuals of 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravali Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravali@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10-21-14 defeat to Malaysia's Leong Chun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district, rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी

0: दिया और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायल

0: से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत ₹175 करोड़ से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpc@aravali.gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया।

0: वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली डलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45

पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। कोयला मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में आरोह खान बंद करने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट भारत की 42 बंद कोयला खदानों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रस्तुत करती है। इसी दौरान झरिया कोयला क्षेत्र में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना के विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत की गई है, जिसे बिना किसी पूर्व रक्त जांच के लगाया जा सकता है। जापानी कंपनी टाकेडा द्वारा निर्मित इस वैक्सीन को पहले ही 42 से अधिक देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हरी झंडी मिल चुकी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में रांची के अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी। इस मामले में सुनवाई और ट्रायल की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विशेषकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना सस्ती फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए उद्यमों को औपचारिक रूप दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल विशेष मेमू, डेमू और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करेगा। आगामी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक जसीडीह, वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ और देवघर के बीच कुल 33 फेरों के साथ कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र में चतरा डोभी मुख्य मार्ग के किनारे एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान घंघरी निवासी मुकेश यादव के रूप में की गई है। युवक की हत्या की आशंका से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने NH 22 को जाम कर प्रदर्शन किया, जिस कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हुआ है। आक्रोशित लोगों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रांची रेलवे स्टेशन से 12 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रांची RPF पोस्ट कमांडर शिशुपाल कुमार ने बताया कि रांची और RPF फ्लाइंग टीम के जरिए चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन नार्कोस के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर VIP गेट के पास ये बरामदगी की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद निवासी एक युवक को हिरासत

हिरासत में लिया गया है। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। और राज्य में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले एक से तीन घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के बादल गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
2: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
1: जी।
2: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
2: कैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है। तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही एक प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते।
2: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और ULTA की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
2: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
2: इस पर हमारी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: अच्छा, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखे।
2: हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान या आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।
1: बिल्कुल,
2: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना।
2: हाँ।
1: लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
2: चलिए सुनाइए।

तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरह से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं

0: हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं। और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव हैं, गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे। कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी।
0: बिल्कुल। और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था। या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना? जैसे ऋतुएं
0: जी
1: बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी

0: जो कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिए और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए, एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है, जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी बात
1: वही
0: है
1: ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी जी। और देखिए, यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल,
1: ठीक है?

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती हैं, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती हैं, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने जोड़ दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं, कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं, लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजो कर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखती है कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं।

0: यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला 12 खड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं सामने हैं। अच्छा ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा
0: जी,
1: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: गीत बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने। यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं हैं।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कारपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है, और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने, स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देशभर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी, और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा। और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से जो करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था, जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोस लेती, और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ, वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी, नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई, बटन, हुक, न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, जाने क्या क्या बढ़िया है, इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठा धराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे। बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाए करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे। तो हम पूछते, आप थकती नहीं है? कहती, काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तख्त के सिराने पर भी वो रखे होते
0: आराम
1: थे।
0: हाँ। से मिल जाते थे आराम
1: हाँ,
0: से, है ना?
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल।
1: था।
0: तो ये भी एक सही, एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे। और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह, अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूद दी हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी।
0: जी
1: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहाँ
0: जी
1: बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहाँ, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए। वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओ का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका, समेट के तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
1: बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी? जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर के हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
0: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए
1: हाँ,
0: जरूर।
1: तो मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल। और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें, घर में सामान की जोठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है। किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहां घर जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यहीं रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम। अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना। इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहां से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंभे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खीज किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खीज बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाजवाने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: जी वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही, उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने खूब चिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छींका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। कोयला मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान बंद करने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट भारत की 42 बंद कोयला खदानों की परिवर्तनकारी यात्रा को प्रस्तुत करती है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में रांची के अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत 1 अगस्त को फैसला सुनाएगी। इस मामले में सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी आउट पोस्ट क्षेत्र के पत्थरगड्ढा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में की गई छापेमारी में मालपहाड़ी ओपी प्रभारी और उनकी पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। लोहरदगा जिले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की नीयत से हथियार लेकर घूम रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस तथा कई अन्य सामान बरामद किए हैं। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल विशेष मेमू डेमू और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन करेगा। आगामी 29 जुलाई से 30 अगस्त तक जसीडीह वैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ और देवघर के बीच कुल 33 फेरों के साथ कई मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: कभी इन गानों ने हमारी खुशियों की साझेदारी की।
3: जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया।
2: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी,
1: एक गली में दिल्ली में घूमते घूमते,
0: अरे
1: ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ। भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि जिसे कि हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत।

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार हाँ। था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे
0: हाँ।
1: रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबड़ में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा की

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना,
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी, उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है, एक हाँ, किताब है बख्शी साहब की कविताओं की जिसमें वो संग्रहित है।
1: मैं जादू हूँ चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी है, मेंशन की हुई है। हाँ।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब, कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये,
0: क्या कहलाती है, मोहियाल
1: मोहियाल मोहियाल।

0: पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोजाल्स, तो
1: जी
0: हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में हैं, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन।
1: जी जी
0: हाँ,
1: जी
0: वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का।

0: फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे, सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने भी नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस
1: वाह।
0: दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ये ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको।
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उस पर एक्टिंग भी करते थे। क्योंकि
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह।
0: मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था, डायलॉग
1: अच्छा।
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर उनको बुलाया जाता था। अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समंदर के पार है।
0: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है, या गाना लिखना है, या एक्टिंग करनी है, या धुन बनानी है, तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को यह समझ
0: हाँ
1: में आ गया कि उसकी
0: हाँ
1: मंजिल बंबई है।
0: हाँ तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज दे वर मार्शल क्लैन
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई, दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी, नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बंबई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी की,
0: बगावत,
1: ये
0: हाँ,
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: बहुत।
1: इतिहास में दर्ज
0: बल्कि
1: है
0: ये
1: इसका
0: पहली
1: नाम।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, वो कू बन जाता है, लेकिन भी
1: हाँ
0: कू।
1: बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज व्हेन दे रियलाइज यार, ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा।
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं। तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी, मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। तो
1: अरे अरे
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: अरे।
0: ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम
0: बहुत
1: थी
0: कम थी।
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच्चे पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल।
0: मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे, उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है।
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह।

0: एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, क्योंकि
1: जी,
0: मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब
0: फॉर
1: घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली एकदम, फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे, छोटा मोटा काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बम्बई जाएंगे, कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: बाकी
1: दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे,
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उस जैसे पैसे मिले, वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे, और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी, और
1: हाँ।
0: हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के, सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे,
0: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब शो, जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे
0: तो
1: अरे,
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहां खराब हो गया गांव में,
1: यहां गलत संगत
0: गलत
1: होगी।
0: संगत होगी इसकी, इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी, और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं
0: डिसिप्लिन,
1: वहां पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था, वो टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, हाँ, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना,
1: करें
0: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तब किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है, अपना हमारी जो कल्चर है, उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतना बड़े बड़े रहते थे
1: बिल्कुल, और वो पंजाबी व्यक्ति दूध और
0: दूध का शौक, हाँ,
1: मलाई,
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्शी साहब ने देखा, यार इधर तो खूब पिटाई हो रही है, लेकिन यार दूध भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे,
1: ताकि रिंग में ना आना पड़े।
0: हाँ, रिंग में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके।
1: हाँ।
0: तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए।
1: हाँ।
0: लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला, यार तुम कौन हो, हैव यू जॉइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर? इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में? वो सर 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए,
1: अभी तक मेरे हाथ से,
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को।
1: बख्शी साहब
0: अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे, सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से, और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो।
1: हाँ,
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज। उस हिसाब से तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन, गहने वहने, हाँ, खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए, देवर 2-3 फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे,
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सब ने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, एक क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत
0: तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी कि ये, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ, यू नो, जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है कि उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकेंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो, तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: बोली।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूं उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई
1: क्या
0: नहीं लिख सकता
1: बात
0: ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, डैडी के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: मां का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल ही मुझे वापस मिली।
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया। दे वॉन्टेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो पुनः से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया। फिर उनको घर दिए गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइपराइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी इज रिकॉर्डिंग आवर,
0: तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो।
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।

0: जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा लगता है।
1: कमाल की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो मतलब टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ दो तीन साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर पे भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना, तो बोलता अभी जाना खेलने के लिए जाना है क्रिकेट खेलने जाना है या गोटी खेलने जाना है या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा गोगी आएगा तब जाना, तो हम लड़ते थे डैडी के साथ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली, तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5 और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता
1: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी,
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
0: हाँ,
1: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का। तो ये सब है, तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों था?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था? ही सेड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया? जब शोहरत आई। शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन

0: से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरे पे बैठते थे, जहाँ वो बैठ के गाने लिखते थे, वहाँ 1-2 घंटा गाना लिखा, 2-3 जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको रिपीट किया।
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो
1: अरे गजब,
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सरकमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में
1: माय
0: जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया, क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंड्रा स्टेशन यार, माई फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन
1: ट्रेन
0: यार।
1: से जा रहे थे। क्या बात है,
0: हाँ, एक
1: क्या बात
0: जर्नलिस्ट
1: है,
0: मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शीश आपको देखते थे यार,
1: ट्रेन में जाते
0: हाँ
1: हुए।
0: क्यों जाते थे, तो बोले कभी
1: हाँ
0: बैठेंगे तो सुनाऊंगा
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत
0: कहानी।
1: ही कमाल की कहानी।
0: तो
1: चलते हैं,
0: हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा,
1: ये बहुत
0: तो वो
1: बारीक बात
0: स्पिरिचुअल
1: है
0: ताकत वापस
1: जी,
0: आएगी।
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बम्बई जा यार, तू बम्बई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बम्बई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में आए, अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट इज, व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, मैंने ज्वाइन द नेवी, इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया, कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया, और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पर चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सेलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनी बडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर। वो है हमारे
1: गजब
0: पास
1: गजब,
0: चिट्ठी।
1: यानी एक
0: हाँ,
1: फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम
0: सिनेमा में
1: दो।
0: काम दो,
1: वाह
0: वो
1: वाह
0: है मेरे
1: वाह,
0: पास चिट्ठी, है हमारे पास, मेरे पास रेडीनेस को संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने
1: हाँ
0: मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: हाँ इंडस्ट्री वालों को थोड़ी
0: इंडस्ट्री को
1: पता
0: क्या
1: है उस
0: कीमत है
1: वक्त
0: कैप्टन की।
1: जी। आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ही वाज
1: क्या
0: द मेन
1: बात
0: स्टार
1: है,
0: ऑफ बराखाना शोज
1: और ये
0: एनुअल इवेंट्स।
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के
0: हाँ,
1: उनकी धुन पर
0: उन्होंने,
1: गाने लिखना शुरू कर दिया था
0: हाँ जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी,
1: जी।
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था,
1: अरे
0: 28, 29 टाइम्स।
1: बाप,
0: क्यों देखा था, ताकि वो कहानी को घोल के पी जाए, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे,
1: ये उनका रियाज था।
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रिटाइज हुआ, कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे,
0: छोड़ी
1: बंबई आए,
0: 1950
1: साल
0: में,
1: कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स बंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए,
1: बंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया। हाँ, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं, उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए
0: हाँ, 3 महीने
1: और
0: में वापस
1: तीन
0: चला
1: महीने
0: गया,
1: में वापस चले गए,
0: वापस
1: और
0: चले गए
1: वापस आर्मी में।
0: हार के, और वो जो आई टोल्ड यू ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम्ड हिम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना सोना मुंडा वापस आ गया है, थोड़े आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, क्योंकि
1: और
0: शादी के
1: शादी
0: लिए
1: भी
0: जो भी
1: लखनऊ
0: थी,
1: में हुई,
0: हाँ शादी लखनऊ में हुई,
1: ये लड़की कैसे
0: और
1: मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है, तेरी शादी है, हाँ तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो,
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी ना।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद,
1: हाँ आनंद से नंद,
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प, और सबसे कमाल की बात है शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत है,
0: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए, लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं कुछ देखना होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देख रहे
1: सीधे शादी तय,
0: शादी तय, और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ ये देखिए ये कमाल की बात है, और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: वी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

राहें मोहब्बत सजी है चांद तारों से, इस रात का क्या कहना, लगता है जो दुनिया मिल गई हो तुम्हें पाकर, इस साथ का क्या कहना।

मचल रहा है दरिया जैसे समंदर में मिल जाने को, है बेताब ये दिल उल्फत के गुलशन में तेरे संग खिल जाने को।

0: ये साथ हमारा। तू मेरे मन में तू मेरे तन में बस गए कैसे बोलो तू मेरे मन में।
1: बजने लगते हैं दिल के तार जब भी तुम गुनगुनाते हो, ठहर जाती है लबों पे दिल की बात जब भी तुम आते हो।

तेरी मेरी इन रातों में रंगीन हुई जाती है। पूछो तो जरा दिल से कि ये मोहब्बत क्यों इतनी संगीन हुई जाती है।

ये कैसा तिलिस्म है प्यार का कि हम हो गए हैं तेरे बस में, भूल कर जमाने की रवायतें और दुनियादारी की रस्में।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के गाए गीत से। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार वर्मा मलिक, फिल्म का नाम नागिन।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से और 6:02 पर कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेतीबाड़ी और किसानवाणी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे। हम रांची केंद्र के प्रसारण में शामिल होंगे शाम 6:55 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। ज़िले में आजकल 7:15 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग का। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक वार्ता, विषय होगा मेदिनी नगर का सफरनामा, वार्ताकार होंगे गोकुल बसंत। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा आप सुनेंगे और 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 8:30 का समय है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देशगान। रात्रि 8:45 पर हिंदी में समाचार, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार। ये तीनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:30 का समय है विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रमों का। विविध भारती का प्रसारण होगा हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी आज की सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारी अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवाणी। आइए युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक वार्ता के साथ। आज की वार्ता का विषय है सड़क दुर्घटना से बचें। वार्ताकार हैं अपर्णा सिन्हा।

सड़क पर आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार की पूरी दुनिया बचा सकती है। कहा जाता है कि जीवन अनमोल है, लेकिन एक क्षण की लापरवाही इसे छीन सकती है। आधुनिक युग में सड़कें विकास और प्रगति का प्रतीक है। यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, व्यापार को गति देती है और देश को आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु यह सड़कें तब मृत्यु का मार्ग बन जाती है जब उन पर चलने वाले लोग यातायात नियमों को अनदेखा करते हैं, जैसे तेज रफ्तार, लापरवाही, नशे की हालत में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी जैसी आदतें प्रतिदिन हजारों लोगों की जीवन को खतरे में डाल रही है। सड़क दुर्घटना आज केवल एक यातायात समस्या नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। सड़क दुर्घटना केवल दो वाहनों की टक्कर नहीं होती, बल्कि यह कई परिवारों के सपने, उम्मीदों और भविष्य को भी तोड़ देती है। इसलिए सड़कें सुरक्षा केवल सरकार या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। जब किसी सड़क पर वाहन पैदल

यात्री, साइकिल चालक या अन्य यातायात साधन की टक्कर, नियंत्रण खोने, नियमों का उल्लंघन या प्राकृतिक कारण से जान माल की हानि होती है तो उसे सड़क दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना छोटी भी हो सकती है और इतनी गंभीर भी कि किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए या वह जीवन भर के लिए दिव्यांग हो जाए। आज सड़क दुर्घटना को केवल दुर्भाग्य नहीं माना जाता, क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए, वाहन को नियमित जांच और चालक जिम्मेदारी से वाहन चलाएं, तो बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं को रोका जा सकता है। भारत विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला देशों में से एक है। इसके साथ ही देश में वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। परिवहन विशेषज्ञों और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं और उनमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु या गंभीर चोटों वाली होती है। सबसे अधिक प्रभावित वर्ग 18 से 45 वर्ग के लोग हैं, अर्थात वही आयु वर्ग जो देश की कार्यशील और उत्पादक शक्ति माना जाता है। इसका अर्थ है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल परिवारों को नहीं बल्कि देश के अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। शोध यह भी दर्शाता है कि अधिकांश दुर्घटनाएं किसी मशीन की खराबी से नहीं बल्कि मानवीय भूल के कारण होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि हमारा व्यवहार बदले तो दुर्घटनाएं और संख्या में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। सड़क दुर्घटनाओं के पीछे अनेक कारण होते हैं, परंतु कुछ कारण सबसे अधिक जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे पहला कारण है अत्यधिक गति। तेज रफ्तार वाहन चालक को यह भ्रम देती है कि वह समय बचा रहा है, जबकि वास्तव में वह अपनी और दूसरों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। दूसरा कारण है मोबाइल फोन का उपयोग। आज मोबाइल फोन हमारी आवश्यकता बन चुका है, लेकिन वाहन चलाते समय इसका उपयोग घातक सिद्ध हो सकता है। केवल कुछ सेकंड के लिए सड़क से ध्यान हटाना भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। तीसरा कारण शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाना। नशा व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, संतुलन और प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। यही कारण है कि शराब पीकर वाहन चलाना कानूनी अपराध भी है और नैतिक रूप से अत्यंत गलत भी है। चौथा कारण हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना। कई लोग छोटी दूरी का बहाना बनाकर सुरक्षा उपकरणों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि दुर्घटना यह नहीं देखती कि यात्रा कितनी लंबी है। हेलमेट और सीट बेल्ट गंभीर चोटों तथा मृत्यु के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। यही कारण है कि सड़क दुर्घटना को केवल यातायात की समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास की चुनौती भी माना गया है। उपचार, पुनर्वास, संपत्ति की क्षति और उत्पादक मानव संसाधन के नुकसान के रूप में गवाना पड़ता है। जब युवा वर्ग दुर्घटनाओं का शिकार होता है तो देश अपनी सबसे महत्वपूर्ण कार्यशील जनसंख्या का एक हिस्सा खो देता है। इसलिए सड़क सुरक्षा केवल व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का भी विषय है। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग भी युवा ही है। आजकल कुछ युवा तेज गति से बाइक चलाना, स्टंट करना, रेस लगाना, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए अपनी बहादुरी सिद्ध करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। एक छोटी सी गलती न केवल चालक बल्कि अन्य निर्दोष लोगों की भी जान जोखिम में डाल सकती है। सच्ची बहादुरी यह नहीं कि आप कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी जिम्मेदारी से वाहन चलाते हैं। असली हीरो वही है जो सुरक्षित अपने घर पहुंचता है और दूसरों को भी सुरक्षित रहने देता है। सड़क पर केवल वाहन चालक ही नहीं चलते बल्कि बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और पैदल यात्री भी चलते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
सड़क पार

करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करें, मोबाइल फोन देखते हुए सड़क पार ना करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। इसी प्रकार साइकिल चालकों को भी हेलमेट पहनना चाहिए और रात में रिफ्लेक्टर या लाइट का उपयोग करना चाहिए ताकि दूसरे वाहन उन्हें आसानी से देख सके। हेलमेट सिर को गंभीर चोटों से बचाता है और दुर्घटना के समय जीवन बचाने की संभावना बढ़ाता है। इसी प्रकार सीट बेल्ट अचानक ब्रेक या टक्कर के समय शरीर को सुरक्षित रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रत्येक चालक और यात्री हेलमेट और सीट बेल्ट का सही उपयोग करे तो बड़ी संख्या में होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट सिर पर बोझ नहीं बल्कि जीवन की ढाल है। खराब मौसम जैसे बारिश, कोहरा, धूल भरी आंधी और रात का समय दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ा देता है। ऐसे समय वाहन चलाते हुए गति कम रखें। दोनों वाहनों के बीच में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सरकार, स्थानीय प्रशासन और यातायात पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता बल्कि उनका ईमानदारी से पालन करना भी आवश्यक है। सरकार को ऐसी सड़कें बनानी चाहिए जो सुरक्षित, वैज्ञानिक और सभी प्रकार के यात्रियों के लिए अनुकूल हो। सड़क पर स्पष्ट संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, ट्रैफिक सिग्नल, स्ट्रीट लाइट तथा पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके साथ ही विद्यालय, महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों में बचपन से ही सुरक्षित यातायात की आदत विकसित हो सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर उचित दंड लगाया जाए, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि लोगों में नियमों के प्रति स्वेच्छा से पालन करने की भावना विकसित हो।

अब आइए हम बात करते हैं उस विषय पर जो बेहद ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से हमारे युवा साथियों के लिए, बच्चों के लिए और छात्रों के लिए। समय का सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग जिसने सीख लिया उसके लिए समय बहुत ही कीमती मानी जाती है और समय के साथ आगे चलना उन्हें पता होता है और समय का सदुपयोग करने के बाद ही उनका भविष्य सही दिशा में जा सकता है। अगर सदुपयोग का क्या अर्थ होता है पहले हम ये समझ लें। उपयोग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन सदुपयोग उसका उचित उपयोग, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, सही उपयोग को हम लोग सदुपयोग कहते हैं। जैसे अगर आपका पढ़ाई का समय है तो उस समय में आपको पढ़ाई ही करनी है। जिस समय अगर आपकी परीक्षा आपके सर पर है उस समय भी आपको विशेष तौर पर पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, पढ़ाई करनी है और किताबों पर आपको ध्यान देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई केवल परीक्षा के समय ही आपको करनी है, पढ़ाई हमेशा करना है। लेकिन जिस समय जैसा समय है, जैसे अगर किसी विषय में आपको परीक्षा के दौरान उसमें ज़्यादा समय मिल गया, 4 दिन 5 दिन का समय है, गैप है परीक्षा में, तो कई बार लोग उस समय को व्यर्थ बिता देते हैं बच्चे, तो उन समय को पूरी तरह से पढ़ाई में दीजिए। इसे हम पढ़ाई समय का सदुपयोग कहेंगे। या कहीं भी अगर इस तरीके का हम कहीं बाहर भी जाते हैं और उस बीच अगर आपको खाली समय मिलता है उस समय भी आप उस समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई लिखाई करें या वहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी है उस चीज़ को करें। ऐसा ना हो कि उस समय को आप व्यर्थ में सोकर या कहीं ऐसे समय व्यतीत कर उसे बर्बाद कर दें। तो उसे समय को बर्बाद नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है और हर वक्त ये ज़रूरी है। दूसरा विषय हम लोगों का है कागचेष्टा बकोध्यानम। कागचेष्टा और बकोध्यानम, ये कहा जाता है कागचेष्टा बकोध्यानम अल्पहारी और स्वानिनिद्रा, ये 4 लक्षण माने जाते हैं छात्रों के, जिसमें कागचेष्टा का मतलब ये

होता है कि प्रयास करना है आपको कौवे की तरह, जिस तरह से आपको प्रयास कई बार करना, अगर कभी किसी क्षेत्र में आपको अगर असफलता हाथ लगती है, उसके बावजूद भी आपको हार नहीं मानना है, उसको एकदम चेष्टा करते रहना है, प्रयास करते रहना है। बको ध्यानम, बको मतलब होता है बगुला। बगुला जिस तरह से नदी के किनारे ध्यान लगा के बैठता है ताकि पानी में मछली आए तो उसे तुरंत पकड़ लें, ऐसी स्थिति के लिए बगुला की तरह का ध्यान उसे करना चाहिए। और तो ये है दोनों, इन दोनों तरीकों से हम लोग चाहते हैं। तो छात्रों के ये दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, अपना ध्यान बिल्कुल पढ़ाई की ओर लगाएं। ऐसा नहीं है कि किताबें खुली हैं और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा करने से आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो कागचेष्टा, बकोध्यानम, ये दो चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखें, और इस तरह से अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। कागचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी, यानी कि कम खाना है। इसका मतलब ये नहीं कि कमज़ोर हो जाना है, खाना पर अत्यधिक ध्यान नहीं देना है, आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई और अपने ऊपर होना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है। स्वान निंद्रा मतलब जिस तरह से स्वान का अर्थ होता है, जो हम कुत्ते को देखते हैं तो उसकी निंद्रा बहुत हल्की होती है, वो तुरंत उठ जाता है, इसलिए वो कहा जाता है कि कई लोगों को देखते हैं कि अत्यधिक सोते हैं, तो अत्यधिक नहीं सोना है, स्वान की भांति आपकी निंद्रा होनी चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतना सोएं, स्वास्थ्य के लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन आप अपने पढ़ाई लिखाई और अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। तो ये थी हमारी आज की बातें, और अब आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए पेश करते हैं एक गीत।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर कल 22 जुलाई को राज्यभर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज खूंटी के तोरपा, खूंटी और तमाड़ क्षेत्र का भ्रमण कर जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करने के लिए प्रेरित किया। डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय से बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ ईआरपीसीसी 2026 की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराध, नक्सल उन्मूलन, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, रेल सुरक्षा और जीरो एफआईआर के क्रियान्वयन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार की नई दिशा, नई पहल नीति से प्रभावित होकर हार्डकोर नक्सली अजय महतो की कुख्यात नक्सली पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। लोहरदगा जिले में पुलिस ने पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हत्या की नीयत से हथियार लेकर घूम रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। और राजधानी रांची में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हरमू चौक पर सड़क किनारे लगाई गई 20 से अधिक अस्थायी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी और किसानवाणी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में आज हम बातें करेंगे जैविक कीटनाशी की। जी हाँ किसान भाई बहन, जैविक कीटनाशी अनेक प्रकार के प्राकृतिक उत्पादों जैसे कि पौधों, खनिज से बनाए गए कीटनाशक, ये सबसे तैयार किए जाते हैं। यह कीटनाशक नॉन टॉक्सिक होते हैं जिनका प्रकृति तथा मानव स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाई, रासायनिक कीटनाशक की अपेक्षा प्राकृतिक कीटनाशक तथा जैविक कीटनाशक के कई लाभ भी हैं और हमारे किसान भाई इसका लाभ उठाते भी हैं। पर्यावरण के अनुकूल, कम गंध, कम हानिकारक, प्रभावशाली और लाभकारी कीटों के लिए ये फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल किसान भाई बहन, जैविक उत्पादों से बने कीटनाशक टिकाऊ होते हैं, साथ ही उपयोग करने और प्रभाव खत्म होने के लगभग एक महीने बाद यह मिट्टी में मिलकर पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं। जमीन पर इनका कोई भी अंश शेष नहीं रह जाता। अन्य रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से पौधों की पत्तियों पर धब्बे या निशान आने की संभावना अधिक होती है, जबकि प्राकृतिक जैविक कीटनाशक के स्प्रे से हम आपको बता दें कि पत्तियों पर कोई भी धब्बे या निशान नहीं आते हैं। किसान भाई, अतः यह पौधों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और हम इसका उपयोग सावधानीपूर्वक भी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक गैर विषैले होते हैं, अतः इनका छिड़काव करने के बाद फलों तथा सब्जियों की हार्वेस्टिंग पर उन्हें पानी में घुलकर खाने के लिए भी आप उपयोग में ला सकते हैं, जबकि रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सप्ताह की प्रतीक्षा हमें करनी पड़ती है। और इसके जस्ट विपरीत, मतलब हम अगर देखें तो आप इसे पानी में धो करके, आराम से इसे पानी से साफ करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों का। और प्राकृतिक कीटनाशक कम गंध होने वाले होते हैं, यह मानव जीवन और अन्य पालतू जानवरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। इसकी अपेक्षा केमिकल यानी रासायनिक युक्त पेस्टिसाइड्स जो हैं, कीटनाशक जो हैं, तेज दुर्गंध वाले होते हैं और इसके उपयोग से व्यक्ति को एलर्जी, अस्थमा जैसी कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। जी हाँ किसान भाई बहन, और इसके लगातार प्रयोग से, रसायन युक्त कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और उपजाऊ क्षमता समाप्त होने लगती है, अतः उनके स्थान पर जैविक कीटनाशक का उपयोग करके आप मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसे भी आप बरकरार रख सकते हैं। किसान बंधु, कभी कभी अधिक प्रभावी रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से पौधे की उत्पादन क्षमता प्रभावित होने लगती है या फिर पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन यदि हम जैविक कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो यह कम प्रभावी होते हैं, जिससे पौधों पर कोई भी दुष्प्रभाव या लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। जी हाँ किसान भाई बहन, ये हम बातें कर रहे हैं जैविक कीटनाशक की, और हमेशा की तरह आज आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह भी पहुंच चुके हैं और ये बत्तख संबंधित बातें आपसे करेंगे, बत्तख पालन से संबंधित बातें करेंगे कि बत्तख पालन से क्या क्या, मतलब आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हमें बत्तख पालन करनी चाहिए। और आपके साथ हैं अब प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, अगर हम बत्तख पालन की बात करें तो हमारे देश में बड़ी संख्या में बत्तखें पाली जाती हैं। बत्तखों के अंडे और मांस बहुत लोग पसंद भी करते हैं और बत्तख पालन व्यवसाय की जो हमारे देश में बड़ी संभावनाएं भी हैं। अब बत्तख पालने के अनेकों लाभ हैं, जैसे उन्नत नस्ल की बत्तख जो है 300 से अधिक अंडे एक साल में देती है। बत्तख के अंडा का वजन 65 से 70 ग्राम तक होता है। बत्तख अधिक रेशेदार आहार पचा सकती है, साथ ही पानी में रहना पसंद होने से बहुत से जलचर घोंघा वगैरह खाकर भी आहार की पूर्ति करती है। बत्तखों के खान पान पर अपेक्षाकृत खर्च कम करना पड़ता है। बत्तख दूसरे और तीसरे साल में भी काफ़ी अंडे देती रहते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से बत्तखों की उत्पादक अवधि अधिक होती है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों की उत्पादक अवधि अधिक होती है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों में कम बीमारियां होती हैं। बहता हुआ पानी बत्तखों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, किंतु अन्य पानी के स्रोत वगैरह में भी बत्तख पालन आप अच्छी तरह से

0: कर सकते हैं।
1: जी हाँ किसान बंधु, और बत्तख को रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं होती है कि नहीं?
0: क्योंकि 25 से 30 बत्तखों को एक छोटे से घर में आप रख सकते हैं। बत्तखों में सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए उन्हें बीमारियों से भी कम खतरा रहता है। और वातावरण के हिसाब से बत्तख के अलग अलग नस्ल हैं। आप अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से बत्तख के नस्लों का चयन कर सकते हैं। इससे किसान भाई नुकसान से बच सकते हैं और उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सकता है।
1: किसान भाई बहन, हम आपको यह भी बता दें कि बत्तख पालन में किसान भाई साफ सफाई का खास ध्यान रखें, फर्श को हमेशा सूखा रखें आप, और बीमार बत्तख अगर हो तो उसे हटा देना चाहिए। चूजे को फर्श पर ना रखें, और फर्श पर रखने से पहले सावधानियां भी बरतें। नीचे चटाई या कोई दूसरी चीज जरूर आप बिछा दें। अंडे से निकलने के 2 हफ्ते बाद उसे चुगने के लिए दाना दें आप। टूटे चावल का बारीक दाना चुगने के लिए आप दें, या पानी में भिगो कर भी आप रख दें तो काफ़ी अच्छा है। जानवरों से चूजे को आप बचाइए, पालतू मवेशियों से भी आप उन्हें बचाइए। 4 सप्ताह बाद चूजे को तालाब में आप जाने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा किसान भाई बहन। और इस प्रकार हमारे ग्रामीण भाई बहन अगर यदि बत्तख पालन करते हैं तो काफ़ी लाभ अर्जित कर सकते हैं वो।
0: और अगर
1: अब
0: इसी तरह,
1: हाँ
0: चूंकि बहुत से किसान भाई इसको व्यावसायिक रूप से अपना रहे हैं और सफलता अर्जित कर रहे हैं, चूंकि इसके लिए अगर आपके पास तालाब नहीं भी है तो भी अगर आपके पास स्थान है तो आप उसे उस स्थान को तालाब में परिवर्तित कर सकते हैं। प्लास्टिक के ड्रमों को काट करके उसमें पानी भर करके भी आप बतख पालन कर
1: कर
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको पूंजी की कम आवश्यकता होती है।
0: और इनका चूंकि जो आहार पर जो व्यय होता है, अगर तालाब आपके पास है, नदी आसपास, तो उसमें आपका जो आहार जो है बत्तखों का, उस पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है।
1: जी, तो ये तो बातें हो गई बत्तख पालन की, और कार्यक्रम में अब आइए हम सुनते हैं शारदा सिन्हा के गाए
0: लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, वैकल्पिक खेती। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अखिलेश शाह, कृषि विशेषज्ञ चियां की पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
1: हमारे किसान भाई इस वर्ष भी मानसून से निराश जरूर होंगे, तो वैसे स्थिति में इनके पास खेती के
2: अभी तो खेत जोतने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है तो गीलापन ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 20 तारीख के आसपास, 20 अक्टूबर के आसपास जोतने लायक आपका ज़मीन जो है हो जाएगा। तो मेरा सलाह होगा किसान भाइयों को लिए कि जो ही आप देखें कि पैर आपका धस नहीं रहा ज़मीन में, तो समझिए कि वो जोतने लायक आपका खेत हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को तुरंत जो है खेत का जो है जुताई करके खेत तैयार कर लें, और उसमें चना, मसूर, तीसी, कुसुम, ये सब फसल यहाँ के लिए उपयुक्त है, ले सकते हैं। और एक चीज़ और किसान भाइयों के लिए कहना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया कि कुसुम फसल जो है यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर आप देखेंगे 50 साल के जो एवरेज वर्षापात है तो लगभग 2007 तक जो हम लोगों ने निकाला था उसमें जो बारिश जो है नवंबर में भी कुछ होती थी, दिसंबर में भी कुछ होती थी, जनवरी फरवरी मार्च मतलब बारिश होती थी। मतलब कहने का है कि एक दो पानी जो है कोई भी फसल लगाने से ऊपर से हो जाता था, लेकिन इधर हम 8-10 सालों में देख रहे हैं ये स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। पिछला बार ही देखिए जो बारिश अक्टूबर के महीने में पिछला बार भी जो है लगभग जो है 105-10 मिलीमीटर लगभग हुआ था बारिश, तो सामान्य से जबकि ज़्यादा था, तो उस चलते थोड़ा सा लेट भी हुआ था सोइंग में। इसके बाद जो है नवंबर में कोई बारिश नहीं हुई, दिसंबर में कोई बारिश नहीं हुई, जनवरी में कोई बारिश नहीं हुई, फरवरी में भी कोई बारिश नहीं हुई, मार्च में जा करके जिस समय हार्वेस्टिंग का टाइम आया खास करके चना के लिए, सरसों का कटाई के लिए, तो उस समय बारिश हो गई थी, तो थोड़ा सा हार्वेस्टिंग में भी लेट हुआ था किसान भाइयों का। तो कहने का मेरा मतलब है कि चूँकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हुए जो कुसुम का फसल है किसानों के लिए इस पलामू प्रमंडल में बहुत ही उपयुक्त होगा।
1: सर कुसुम से क्या तात्पर्य है, क्या उसके लिए हमारी जो जमीन की मिट्टी जो है वो उसके लिए अनुकूल है, यहाँ की जो वायु जलवायु है वो अनुकूल है?

0: और इसका फायदा हमारे किसान भाइयों को क्या मिल सकता है?
1: कुसुम जो है एक वाइल्ड सीड क्रॉप है, तिलहनी फसल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ड्राउट टॉलरेंट जो बहुत ज़्यादा है, सूखा सहने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पलामू
2: किसान भाई वैकल्पिक खेती की बातें आपने सुनी, वैकल्पिक खेती पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अब आइए हैं, सुनते हैं वार्ता कृषि वानिकी पर आधारित। भेंट वार्ताकार हैं अनिल कुमार सिंह।
3: कृषि पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण बहुत सारी हानियां हमारे सामने आ रही हैं। वनों का संरक्षण नितांत आवश्यक है, जी हाँ किसान भाई, और कृषि वानिकी को हम अपनी खेती बाड़ी के साथ लेकर कैसे चलें, जिससे हमें पर्यावरण प्रदूषण होने से भी हम बचा सकें और हमारी खेती भी फले फूले। आज कृषि वानिकी से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वानिकी विभाग के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। सर का स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
4: नमस्कार
3: सर। प्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि कृषि वानिकी क्या है।
4: किसान भाई, जहाँ तक कृषि वानिकी एक विषय आपको नया सा लग रहा है, लेकिन ये कोई नया विषय नहीं है। इसकी एक समुचित व्यवस्थित जो विज्ञान का रूप दिया गया है कृषि वानिकी, तो वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्रीज का आपको खेती में समावेशित करना, तो यही है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब होता है कि जो परंपरागत वन भूमि है उसमें, उससे हट करके जो हम खेती कर रहे हैं, जो खेती योग्य भूमि है उस पर हम वनों को कैसे हम समायोजित करके स्थान, जैसे स्पेस और टाइम, आपको दोनों का मतलब इसमें प्रबंधन का बेहतरीन तौर तरीके मतलब कि सुझाव का सुझाव है इसमें, और समावेश भी किया गया है। साथ साथ ये पर्यावरण तथा इससे होने वाले आर्थिक लाभ, ये दोनों का बहुत ही अच्छा सामंजस्य इसमें रखा गया है
3: जी। अब प्रश्न उठता है कि कृषि वानिकी के तहत हम किस पौधों का रोपण करें, कैसे हम कृषि वानिकी को खेती में समावेश करें?
4: किसान भाई, इसमें वन रोपण, खास करके पौधे को अपने जमीन, कृषि की योग्य भूमि पर लगाना, ये तो बड़ी संशय की बात है। लेकिन वनों की महत्ता, वनों की सीधे महत्व क्या है, उससे होने वाली हमारे कास्ट का जो लकड़ी प्राप्त होना, इमारती लकड़ी प्राप्त होना, जलावन की लकड़ी प्राप्त होना, साथ साथ चारा का जो उपलब्ध कराने वाला जो वन वृक्ष है उसको समाहित करना, कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको फर्टिलाइजर प्लांट कहा जाता है, जैसे आपका शेषवैनिया, जो खास करके जिसका मतलब कि फूल मार्केट में 100-150 रुपये के जी तक मतलब बिकता है। हाँ, तो ऐसे अगर हम मतलब कि सीजनल, जो इसका आयु 4, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक मतलब रख सकते हैं खेतों पे, इसके पत्तियों से आपको मतलब कि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ साथ इससे प्रत्येक पेड़ से 10 से 12 केजी तक इसका फूल, जो बाज़ार में बहुत कीमती मतलब कि 100-150, 125 रुपये किलो इसको बिकता ही है, तो ऐसे मतलब कि वन वृक्षों को समाहित करके, समावेशित करके आप कृषि की का जो खास करके इसके अंतराल, जब तक बोले कि इसके अंतराल, तो मैं इसको बहुत सघन वनरोपण नहीं करूँगा, इसके 8-10 मीटर का जो अंतराल खेतों में रख करके, जिससे आपका हल ट्रैक्टर वगैरह आसानी से घूम सके, और दो कतार बीच में लगाएंगे, फिर 8 मीटर लगाएंगे, फिर दो कतार या एक कतार, जैसे मतलब कि आपकी सुविधा हो, लेकिन इसका रोपण पूरब से पश्चिम दिशा में करेंगे। ये वैसे भूमि का चयन करेंगे जो आपका कृषि लागत के अनुरूप आपका उससे आपका लाभ नहीं मिल रहा है, तो वैसे भूमि का चयन करें, ऊपरी भूमि का, अपलैंड्स का चयन करें। अगर ऐसे पद्धति आप 4-5 साल खेतों पर रखते हैं, 7 साल 8 साल, तो खेतों की जो भूमि है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी।
3: अब प्रश्न उठता है कि इसको हमारे किसान भाई लगाएंगे कैसे?
4: हाँ, इसको लगाने का बात है किसान भाई, जिसकी मैं हल्की सी चर्चा पहले ही कर दिया, तो इसमें लगाने का क्या है कि जैसे इसमें लगाने के लिए काष्ठीय लगाना चाहते हैं, तो उसमें सागवान, पलामू की भूमि में खास करके पलामू, गढ़वा, लातेहार, ऐसे मतलब क्षेत्रों के लिए आपका सागवान जो है काफ़ी किसानों का पसंदीदा मतलब पौधा है, तो इसको 2-2 मीटर, है ना, पौधे से पौधे का जो कतार 2-2 मीटर यानी कि 7.5 फीट लगभग 7.25 फीट एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप मतलब रख करके, और जो पौधों का चुनाव करेंगे इसमें बराबर बराबर ऊंचाई बराबर मोटाई का जो जो सीडलिंग का पौधा नर्सरी से चयनित करके लगाएंगे और 2-2 मीटर अंतराल पर लगाना है। 3 साल बेहतर इसका देखभाल करिए, इसके बाद आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे साल जो ऊपरी जो पत्ते हैं उसका 1/3 भाग हर दूसरे साल नीचे से तेज धारदार चाकू से या कुछ ऐसे तेज धार हथियार सिकाइटियर वगैरह से आप उसकी शाखाओं को काटते रहें, जिससे कि कृषि फसलें जो 8-7 मीटर का जो स्पेस दे रहे हैं 2 कतार के बीच, उसमें जो कृषि फसल लगा रहे हैं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पेड़ का नहीं पड़े। इसलिए इसको कतार की जो पौधे से पौधे की दूरी जो रखेंगे 2 मीटर और कतार से कतार की दूरी जो है रखेंगे 7-8-9 मीटर 10 मीटर तक रख सकते, जिससे आप 10-12 साल तक आपको बड़े मज़े से मतलब कि इसके जो 12 मीटर 8 मीटर 7 मीटर 9 मीटर जो भी रखते हैं सुविधाजनक उस स्पेस में आप खेती कर सकें। अब ट्रैक्टर भी घूम जाएगा, हल भी चलेगा बढ़िया से। तो किसान भाई इसको, जहाँ तक मतलब कि सवाल है आपका चारा का फसल का, तो चारे के फसलों को मैं सुझाव देता हूँ कि वो आपका पगडंडियों पर लगाए, वो खेत में समाहित न करें, पगडंडियों के चारों तरफ मतलब लगा दें। प्रत्येक साल उससे मतलब कि पत्ते काट करके जब आपके हरी घास कहीं ना मिले तब इसके हरे पत्ते को अपने जानवर बकरियों बैल भैंस गाय सभी को मतलब कि आप खिला सकते हैं।
3: तो इसका मतलब है कि हमारे किसान भाई लोग ये जो काष्ठीय वृक्ष जो लगाएंगे साथ साथ में अंतर्वर्ती खेती भी कर सकते हैं
4: बहुत अच्छा से। और अगर ऐसा करेंगे और इसे अगर कुल लाभ देखा जाए तो आपको जो सोल खेती जो एकल फसल लेते हैं साल में उससे आपको कम से कम 2 से 2.5 गुना मतलब की फायदा आपको मिलेगा। अगर इसके सभी अभी का कीमत अगर आंकते हैं तब निश्चित तौर पर इसे जो एकल खेती करते हैं उससे आपको कृषि वाने की पद्धति से जो आय होगी वो निश्चित तौर पर ज़्यादा होगी।
3: अच्छा, आपने पलामू के कई गांवों का भ्रमण किया है, आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं काष्ठिया में। एक तो सागवान की बात हमने की, और कौन कौन से वृक्ष लगाए जा सकते हैं
4: पलामू की? खासकर के किसान भाई जो जलवायु है वो थोड़ा शुष्क टाइप का है, यहाँ 7-8 महीने जो है शुष्क टाइप का जलवायु रहता है, ये स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में हमारे मतलब खासकर के ऐसे भूभाग में सागवान का पौधा चयन करें बढ़िया। और दूसरा है यहाँ खैर बहुत अच्छा होता है बगैर कोई विशेष परेशानी का, तो खैर के पौधा वो भी इकोनॉमिकल पौधा है, उसका अगर 18-20 साल 22 साल अगर खेतों में रह गया तो प्रत्येक पौधा से 1,000 रुपया 1,500 रुपया 2,000 रुपया आपको उसे कत्था के रूप में मतलब कि जो है एक्सट्रैक्शन अगर बड़े पैमाने पर किसान सामूहिक रूप से करते हैं तो इसको बेच करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बांस का खेती भी मतलब कि करें, और जैसा कि मैं बताया कि अगस्त का पौधा जिसका कि फूल बाज़ार में आपको 125-150 रुपये किलो बिकते हैं, तो ऐसे पौधे का 2 कतार 8 मीटर के अंतराल पर 2-2 कतार मतलब लगा दीजिए, 3-3 मीटर जो पेड़ों का कतार होगा, 2 पौधे का कतार, 2 कतारों के बीच पेड़ के लिए वो 3 मीटर रखिए, 2 मीटर ने 3 मीटर, और जो खेती वाला कतार रहेगा वो 7-8 मीटर रखिए। ऐसे अगर करेंगे तो आपको प्रति हेक्टेयर निश्चित तौर पर आपको इसे 25 से लेकर के 30 हज़ार रुपये आपको आमदनी मतलब मिलेगी, जो कि आपको खास करके यहाँ के ऊपरी भाग से जो होने वाली आमदनी है उसके बराबर लगभग है।
3: तो और इससे छुट्टी और कोई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कृषि वानिकी से?
4: कृषि वानिकी खास करके मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं कि पलामू की धरती खास करके ऊपरी भूमि का सवाल जहाँ तक है मैं उसकी प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, चूँकि यहाँ का ढलान लिए हुए ऊपरी भूमि है, ऐसे भूमि में ढलान के खिलाफ जो ढलान के खिलाफ अगर आप मतलब वनस्पतियों को समाहित करते हैं खास करके शू बबूल या टेफ्रोसिया जैसे पौधों को लगाते हैं जो कि फर्टिलाइजर प्लांट कहा जाता है, तो ऐसे पौधे का अगर आप समाविष्ट करके और ढलान के खिलाफ 6-7 मीटर अंतराल पर अगर मतलब कि ढलान के जो स्लोप है उसके अगेंस्ट में अगर इसको लगाते हैं सीरीज में
3: जी,
4: तो इसकी उर्वरा शक्ति आपकी भूमि की बनी रहेगी और उसमें जो उत्पादन लेते हैं उसका उत्पादन में भी डेढ़ा से दुगना मतलब कि आप प्राप्त करेंगे दूसरे तीसरे साल से। तो बहुत अच्छा तकनीक है।

0: इससे न केवल मतलब कि भूमि की उर्वर शक्ति में सुधार होगा, बल्कि जानवरों के लिए चारा का फसल, जैसे सुबबूल एक अच्छा चारा का फसल है, वो प्राप्त होगा। और टेफ्रोशिया है तो उसे जलावन की लकड़ी मिलेगी प्रत्येक वर्ष, तो एक अच्छा मतलब की साधन होगा।
1: किसान भाई बहन सुन रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से की गई बातचीत कृषि वानिकी पर। जी हाँ किसान भाइयों, और अब चूंकि हमारा समय आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए कार्यक्रम खेती बारी में बातें आज बस यहीं तक। दीजिए अब अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को इजाज़त।
1: नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। और ग्रामीण भाइयों, हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार।
1: जी हाँ किसान भाइयों, कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बात है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। जी हाँ किसान बंधु, मौसम नम एवं अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना बनी रहेगी। भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कना, तेज हवा के झोंके वगैरह आप महसूस करेंगे। किसान बंधु, फसलों का गिरना, फलों का टूटना आम बात है ऐसी स्थिति में, इसलिए आप निगरानी करते रहिए। और किसान भाई बहन, हम यह भी बता दें कि आने वाले दिनों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना को देखते हुए हमारे किसान भाई मध्यम खेत में आगामी दिनों में होने वाले वर्षा जल के साथ साथ ऊपरी खेतों से पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में करके अपन पानी जो है उसे जमा करके आप फिर रोपा कर सकते हैं। और जिन किसान भाई के पास ऊपरी खेत अभी भी परती रह गया है, वे कुलथी, उड़द, मूंग या अनेक सब्जियों की खेती के लिए तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ किसान भाई बहन,
2: किसान भाई, आगामी 5 दिनों में सिंचाई, अंतर कृषि संचालन और खड़ी फसलों में पौध संरक्षण उपायों और उर्वरकों के प्रयोग को स्थगित कर देना चाहिए। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। भारी बारिश से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों को पॉलीथीन से ढक दें। बारिश और बादल की स्थिति में खड़ी फसलों में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए किसान भाइयों को इसकी लगातार निरंतर निगरानी करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि टमाटर फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जाल फसल के रूप में गेंदा का उपयोग काफ़ी उपयोगी है।
1: जी हाँ किसान बंधु, और हमारे ग्रामीण भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि वे 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रोपाई करें। रोपाई से पहले जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित कर लें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। जल्दी बोई गई मक्के की फसल 4 सप्ताह की अवस्था में है। जी हाँ किसान भाई, अतः फसल में निकाय गुड़ाई आप करिए तथा 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में डालिए और मिट्टी को चढ़ा दीजिए। लंबे समय तक बादल छाए रहने तथा वर्षा के कारण मक्के में जीवाणु डंठल सड़न के संक्रमण की संभावना रहती है। विशेषकर अंकुरण से वानस्पतिक अवस्था तक ऐसा आपको प्राप्त होगा, देखने को मिलेगा। तो डंठल की सड़न को नियंत्रित करने के लिए हमारे किसान भाई सूखे दिनों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित रसायनों का प्रयोग करें। इसके अलावा 30 ग्राम MOP प्रति एकड़ 2 बार में उसे आप डालें, इससे इस रोग की गंभीरता बहुत हद तक कम हो जाती है। किसान बंधु,
2: किसान भाई, वर्षा की कमी को देखते हुए किसान भाई धान की फसल में छटाई करें ताकि पानी और पोषक तत्वों के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा कम की जा सके। छटाई की गई पौधों को पशुओं को खिला दें। सीधी बुआई वाले धान की फसल 3 से 4 हफ्ते की अवस्था में है, क्योंकि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, इसलिए किसान भाई निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के लिए जाएँ। 15 किलो यूरिया प्रारंभ में प्रति एकड़ डालें, उसके बाद निराई गुड़ाई करें और खाली जगहों को भरें। खाद डालते समय अतिरिक्त पानी निकाल दें और 1 दिन बाद पानी को खेतों में डाल दें। समय पर बोई गई फसल वानस्पतिक अवस्था में है, ढलान की तरफ नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी निकालने का इंतजाम करें। जो किसान अभी भी बुआई का इंतजार कर रहे हैं उन्हें ज्वार, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग और भिंडी के साथ अंतर फसल अपनाने का सुझाव दिया जाता है। अंतर फसल के मामले में अरहर के साथ ज्वार पंक्ति अनुपात 1:1, अरहर के साथ मक्का पंक्ति अनुपात 1:1 और अरहर के साथ मूंगफली उसका अनुपात 1:3, अरहर के साथ सोयाबीन उसका अनुपात 1:2 और अरहर के साथ उर्द या मूंग उसका भी अनुपात 1:2 और अरहर प्लस भिंडी पंक्ति अनुपात 1:1 बनाए रखा जाना चाहिए और तदनुसार उर्वरक देना चाहिए।
1: जी हाँ किसान भाई बहन, हम आपको यह भी बता दें ग्रामीण बंधु कि जुलाई में टमाटर की नर्सरी में पौध लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडे 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही आप ये कार्य करिए और बीज को बोने से 24 घंटे पहले बीज उपचारित करना बिल्कुल नहीं भूलिए किसान भाई। और इसकी उन्नत किस्में हम आपको बता दें, स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा शंकर 1 और सुरक्षा। जरबेरा की अगर हम बात करें किसान बंधु, तो जरबेरा की फसल में फफूंद रोग के प्रकोप देखे जा रहे हैं और इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई बायवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हर पौधे के जड़ों के पास डालें तो काफ़ी लाभ पहुंचेगा। जी हाँ ग्रामीण बंधु, ये हुई बातें ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। किसान भाई बहन, कार्यक्रम में अब हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और अंतराल
2: के बाद पुनः हाजिर हुए।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी में।
7: आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, पशुओं के चर्म रोग कारण एवं निदान। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, आदर्श ग्राम पदाधिकारी।
8: किसानों से समस्याओं से जुड़े हुए सारी समस्याओं का निदान करने में बहुत आगे रहते और बहुत ही सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करके आज बताएंगे कि पशुओं में होने वाली एक सामान्य बीमारी, आजकल बहुत तेज पशुओं को देखेंगे तो चकत्ता टाइप का, कुछ फुफुंद टाइप का या कुछ फोड़ा फुंसी टाइप का पशुओं में हो जाता है। किसान भाई खुरपका मुंहपका तो जानते हैं, नाम सुने हैं, लेकिन ये एक तरह का अलग तरह का बीमारी हो रहा है, तो क्या बीमारी है और इसके बारे में क्या जानकारी है, ये हम डॉक्टर साहब से ही सुने।
9: पशुपालकों को नमस्कार, डॉक्टर प्रमोद कुमार का। अभी पशुपालक भाई जो पशु रखे हुए हैं वो परेशानी में है कि उनके पशुओं को शरीर पर सिक्का जो होता है उसके बराबर साइज चकता चकता निकल रहा है,
8: सिक्के के साइज का
9: और पूरे शरीर में आ रहा है, उसके कारण से पशुओं को बुखार हो रहा है, पशु भोजन नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से उनकी जो उत्पादन क्षमता है वह प्रभावित होती है, दूध देना बंद कर देती हैं। अगर पशु गर्भवती है तो गर्भपात होने लगता है, और इसमें अगर पशुपालक का थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो देखेंगे कि दूसरे तीसरे दिन से उनको बुखार 104 डिग्री फॉरेनहाइट से 106 डिग्री फॉरेनहाइट तक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पशुपालक अपने पशुओं को चिकित्सा नहीं कराते हैं तो 104 से अधिक बुखार होने के कारण पशुओं का गर्भपात होगा।
8: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ आप बताए कि शुरू से एक बार फिर से हमारे किसान भाइयों को, चूँकि सुनने का और करने का, एक बार फिर से उनको बात ये समझ में आ जाए कि क्या है, कोई विशेष बीमारी चल रहा है इन दिनों, क्या बीमारी है?
9: बिल्कुल आपने सही कहा कि ये विगत 3 सालों से ही ये बीमारी पूरे भारतवर्ष में राजस्थान से प्रारंभ हुई जो हमारे झारखंड तक पहुंची। ऐसे में ये विषाणु जनित बीमारी है, वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज का सीधा कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन जैसा उनका लक्षण होता है तो लक्षणों के आधार पर जो हमारे पशु चिकित्सक उन्हें, चूँकि आपने पशुपालक ने देखा होगा कि अपने शरीर पर चकते चकते हो रहे हैं,
8: किस तरह का चकत्ता हो जाता है,
9: उस करीब करीब आप देखेंगे तो आपको जो पुराना 25 पैसे का सिक्का था उसके बराबर हो सकता है या 1 रुपए का सिक्का के बराबर भी हो सकता है,
8: सिक्के की तरह का,
9: सिक्के की तरह चकता होगा पूरे शरीर पर।
8: अच्छा,
9: और ये 3 रूपों में देखा जा रहा है, कुछ पशुओं में है कि 100-150 की संख्या में ही चकते आ रहे हैं, किसी को 500 की संख्या में आ रहे हैं, किसी में उससे भी ज्यादा है। तो जिनके पशुओं में 100-125 के आसपास चकते आ रहे हैं वो माइल्ड फॉर्म में है, हल्का है वो, तो उन्हें इलाज करने पर 3 दिनों के अंदर वो स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन जिन पशुओं को 500 से ऊपर चकते आ रहे हैं उन्हें 5 से 7 दिन इलाज की जरूरत है
8: जी।
9: और इसमें देखा ये जा रहा है कि जैसे ही ये चकते आने शुरू होते हैं तो पशुओं को बुखार हो जाता है। जो बुखार अगर थर्मामीटर से लेंगे हम तो लगभग हमें देखा गया है कि 104 डिग्री फॉरेनहाइट से 106 डिग्री फॉरेनहाइट रहता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि बुखार की दवाई देकर के उनको बुखार को कम किया जाए। दूसरे कि उनके शरीर पर जो सूजन आ रहे हैं चकते के कारण, उस चकते को कम करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं, एविल या जीट नाम से आती है बाजार में, तो उसे 5 ml रोज दें। एक एंटीबायोटिक, चूंकि घाव हो गया है तो उसको भरने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक आप उसको 5 से 7 दिन दें। और साथ में ताकत के लिए अभी कुछ दवाइयां हैं बी कॉम्प्लेक्स वगैरह की, वो दे सकते हैं। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन उन्हें 1 ml दवा 50 किलो शारीरिक वजन पर 10 दिन पर एक बार देने की जरूरत है, क्योंकि एंटीवायरल के रूप में ये काम करता है।
8: अच्छा डॉक्टर साहब, पशु जो है सो खाना पीना कम कर देते हैं या नहीं ही खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
9: ऐसी स्थिति में मैंने पहले बताया आपको कि ताकत की दवाइयाँ जो है बी कॉम्प्लेक्स है, लिवर टॉनिक है, उसकी सुई उसको दें। और भूख बढ़ाने वाली कुछ दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध है, आयुर्वेदिक भी उपलब्ध है और अंग्रेजी दवाएं भी उपलब्ध हैं, उसका किसान जो है पशु को खिलाएंगे तो ये 5 से 7 दिनों के अंदर पशु स्वस्थ होने लगेंगे। कुछ जो पशु हैं 5 से 7 दिन बाद स्वस्थ नहीं होंगे। ये जो चकता है वो पेट पर का घाव तो स्वतः ठीक हो जा रहा है, लेकिन कुछ पशुओं के जो जोड़ हैं आगे के पैरों में जोड़ पर या पीछे के पैरों पर जोड़ पर है या नीचे जो उनका खुर होता है उसके ऊपर जोड़ है, इन सभी जगहों पर जो चकते होते हैं वो कभी कभी लेट उनका घाव भरता है तो देर होती है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालकों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए जो है बाजार में रेड पोटास बहुत सस्ती दवा है, उसे आप ले लें और 5 लीटर पानी में 1 गेहूं के दाना बराबर दवा डालें और उसको घोल करके उस घाव को सुबह धो लें। उसके बाद आपके गांव में ही करंज का तेल, नीम का तेल या कटैला का तेल आपका उपलब्ध रहता है, आप उस तेल को 1 लीटर लें और एक गंधक पाउडर जो कि खुजली में लगाया जाता है उससे 200 ग्राम किसी पंसारी की दुकान से लेकर के, और तीसरी जो कपूर हम लोग पूजा करते हैं उस कपूर 50 टिकिया को लेकर के आप मिश्रण बना लें और इसे सुबह 9 बजे और शाम में 2 बजे के आसपास जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि घाव पर एंटीसेप्टिक होगा, एंटी फंगल होगा, आपका कीड़ा जो है वो बैठ नहीं सकता है कपूर के कारण, तो आपको अंडे नहीं देंगे तो घाव आपका जल्द स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से 10 दिनों में पशु आपके स्वस्थ हो सकते हैं,
8: मक्खी से भी दूरी बचनी रहेगी।
9: ये बीमारी मक्खियों के द्वारा, चमोकन के द्वारा, अठैल के द्वारा ही फैल रहा है। एक पशु को अगर आपके घर में लंपी स्किन डिजीज हो गया है और उस पर जो मक्खी या चमोकन बैठे हुए हैं वो दूसरे पशु पर जाएंगे तो उनको भी ये बीमारी पहुंचाएंगे। तो ये है, साथ में पशुपालक अगर उनका पशु स्वस्थ है, अभी तक बीमार नहीं हुआ है, तो स्वस्थ पशु को इसका टीका भी लगा सकते हैं। ये टीका सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है और बाजार में भी उपलब्ध है। ये टीका जो पूर्व में हम लोग बकरियों में लगा रहे थे चेचक में, वही टीका इसमें भी कारगर है। ये भारत सरकार का गाइडलाइंस आया हुआ है कि आप गोटपॉक्स नाम से वैक्सीन 25 डोज, 50 डोज और 100 डोज तीनों का उपलब्ध हो गया है। जैसे भी आप वो लाइव वायरल वैक्सीन है, जीवित वैक्सीन है, उसका बर्फ में ही रखा जाएगा तभी वो जीवित रह पाता है
8: जी।
9: तो आप जब भी आए अपने अस्पताल में या दवा दुकान में तो आप थर्मस लेके आए, उसमें बर्फ डाल लें और उसको घर ले जाएं। और उसके साथ में ये पाउडर फॉर्म में दवा होती है, उसके साथ उस दवा को घोलने के लिए उसके साथ में पानी आता है, उस पानी को निकाल कर तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें 2 ml पानी को डालें घोलने वाली पानी को, और उसको निकाल के वापस आप 25 ml या 50 ml या 100 ml की जो सीसी जो पानी आप रखे हुए उसमें वापस कर दें और उसको भी रात भर ठंडा फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें। और जब वो घोल तैयार हो गया, अब आप 25, 50 या 100 का जो आपका डोज है, 1 ml सुई सभी पशु जो स्वस्थ पशु हैं उसको चमड़ी में अगर एक बार दे दें और उनको अगर 14 दिन ये बीमारी नहीं होती है तो आपके पशु 1 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, उनको ये बीमारी नहीं लगेगी।
8: मतलब एक तरह का ही बचाव वाला टीका,
9: बचाव का टीका। और ये आप किसान भाइयों को ये भी याद रखना चाहिए कि 4 महीने से छोटे पशु हैं उनको ये टीका देने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उन दवा देने के बाद जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसको हम लोग अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं वो बनता नहीं है। तो 4 महीने से नीचे के बछड़े को सुई देने से मरता नहीं है लेकिन उसको फायदा होता नहीं है
8: जी।
9: दूसरी बात आती है कि उन पशु जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनको टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। तीसरा, जो गर्भावस्था में हमारी गायें चल रही हैं उनको अगर सातवां महीना प्रारंभ हो गया है, आठवां महीना चल रहा है या नौवां महीना चल रहा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में एडवांस स्टेज कहते हैं, इन पशुओं को टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। और शेष पशुओं को टीका लगाएं। दूध देने वाले पशुओं में थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए आपका दूध कम हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद दूध लौट जाएगा और आपके पशु एक दिन के दूध का आप अगर मुँह छोड़ देते हैं तो आपके वो पशु को भी टीका लगाने के बाद आप निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि जब पशु बीमार,
8: साल भर तक बीमारी नहीं,
9: बीमारी नहीं होगी। और पशु पर जो है एक के इलाज पर लगभग 3 से 5 हजार रुपए खर्च जो हो रहे हैं, उसके बजाय हम उसको 30 रुपए मैक्सिमम
8: टीका लगाने
9: में लगता है, तो हमें टीका की प्राथमिकता देनी चाहिए।
8: टीका लगा दिया मतलब बीमारी नहीं होगी,
9: बीमारी नहीं,
8: एक तरह का ये बंधन हो गया। तो किसान भाई अगर टीके का बढ़िया से समुचित प्रयोग करें।
9: जी जी,
8: तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी कि जो आजकल चल रहा बीमारी लंपी डिजीज़ और चकत्ते वाली बीमारी, उसका क्या इलाज है, कैसे कर सकते हैं, क्या हम उसमें बचाव करें, कैसे टीकाकरण करें, इन सब बातों को समेटे हुए बहुत ही सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करके आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद
6: जी। हाँ, किसान भाई बहन, आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय था पशुओं के चर्म रोग और इसके निदान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रमोद कुमार और इनसे बातें हो रही थी मनोज कुमार की। जी हाँ ग्रामीण बंधु, कार्यक्रम में अब हम संक्षिप्त बातें कर लेते हैं कि जिप्सम के उपयोग में हम कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर ना रखें किसान भाई आप, तथा जमीन से कुछ ऊपर रखें। मृदा परीक्षण के उपरांत ही आप जिप्सम की उचित मात्रा का प्रयोग खेतों में करें। तेज हवा बहने पर जिप्सम का भुरकाव जो है उसे आप रोक दें।
7: और जिप्सम डालने से पहले
6: इसके जो ढेले होते
7: अगर
6: हैं।
7: इसमें जो अगर ढेले जो रहते हैं, ठोस जो पदार्थ रहता है, इसे कूट करके आप महीन बना लें।
6: अच्छा।
7: और जिप्सम का भुरकाव करते समय आपके जो हाथ है वह सूखे होने चाहिए
6: जी।
7: और जिप्सम का भुरकाव पूरे खेत में आप समान रूप से करें, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, एक समान आप भुरकाव करें। और जिप्सम डालने के पश्चात उसको मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें और जिप्सम को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
6: जी हाँ किसान बंधु, अपने नज़दीकी जो ब्लॉक कार्यालय हैं वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसे। और एक स्लोगन भी है कि जिप्सम एक फायदे अनेक, मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना है, फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, और इसमें जिप्सम की महत्वपूर्ण भूमिका है।
7: इसलिए किसान भाई, जिप्सम के उपयोग से तिलहनी दलहनी व अनाज वाली फसलों के उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के साथ साथ भूमि का स्वास्थ्य भी बना रहता है। जिप्सम पोषक तत्व गंधक का सर्वोत्तम वह सस्ता स्रोत है एवं हमारे राज्य में आसानी से उपलब्ध है।
6: जी हाँ किसान भाई बहन, और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रयोग से पहले हमें मिट्टी का परीक्षण जो है वो आवश्यक हो जाता है, इसलिए मृदा परीक्षण आप कभी नहीं भूलें।
7: क्योंकि मिट्टी परीक्षण से ही यह पता चलेगा कि आपके भूमि में जिप्सम की कितनी मात्रा डालनी है या नहीं डालनी है।
6: जी, तो ये तो बातें हो गई जिप्सम के प्रयोग से संबंधित आज के नसीहत के अंतर्गत। और किसान भाई बहन, अब बातें मौसम से जुड़ी हुई।
7: आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 95%, जबकि शाम की आर्द्रता 91% दर्ज की गई। वर्षापात 25.8 मिलीमीटर।
6: और इसी जानकारी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
7: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत।
6: नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, 49 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का है, संवैधानिक अधिकार। कल राज्यभर में सभी बूथों पर लगेगी चुनावी पाठशाला। रिम्स शासी निकाय की बैठक संपन्न। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिम्स को देश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए किया जाएगा काम। झरिया में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कल नई दिल्ली में संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। और रांची के नवीन पुलिस केंद्र में दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज संपन्न हुए कैबिनेट बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने सहमति दी। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई और रामगढ़ के मांडू में मांडू डिग्री महाविद्यालय खोलने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
1: सस्टम झारखंड विधानसभा का सस्टम मानसून सत्र 6 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक आहूत किए जाने 5 कार्य दिवस। 37वां है आदर्श विद्यालय योजना का अवधि विस्तार 25-26 से 29-30 तक।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर कल 22 जुलाई को राज्यभर में सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स और बूथ लेवल एजेंट्स की तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है। इस बैठक के दौरान चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने संबंधित BLA 2 की उपस्थिति इस बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें तथा मतदाताओं को भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज खूंटी के तोरपा, खूंटी और तमाड़ क्षेत्र का भ्रमण कर जनजातीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर BLO को जमा करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए वृद्ध, दिव्यांग, PVTG सहित सभी को हर संभव मदद देकर सूची से जोड़ा जाए। के रवि कुमार ने सभी से 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप में नाम शामिल कराने के लिए समय पर फॉर्म जमा करने की अपील की। रांची में आज रिम्स शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 26 एजेंडों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिम्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर देश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में लाने की दिशा में काम किया जाएगा।
2: कल जो है यहाँ पर हम डॉक्टर्स की नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो आने के बाद देखिएगा कि रिम्स में अच्छा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ बेहतर डॉक्टर्स नहीं होंगे, बेहतर इलाज नहीं मिलेगा। तो कल बड़ी संख्या में हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और यहाँ के तमाम डॉक्टर्स ने ये निर्णय लिया है, खास करके जो सीटें बड़ी है।
0: जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित पेयजल आपूर्ति करने को लेकर आज सफल ट्रायल किया गया। मानगो नगर निगम की ओर से संचालित डिमना जलापूर्ति योजना के शंकुसाई श्यामनगर स्थित स्वर्ण रेखा नदी पर बने इंटेक वेल से अस्पताल परिसर तक जलापूर्ति कर परीक्षण किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज

0: लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने और उस पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 जारी किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्यूरो को मजबूत करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 13 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा कल नई दिल्ली में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में खान बंद करने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस दौरान झरिया कोयला क्षेत्र में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना के विकास और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। डीजीपी श्रीमती तदाशा मिश्रा ने आज पुलिस मुख्यालय से बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के डीजीपी के साथ ईआरपीसीसी 2026 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राज्यीय अपराध, नक्सल उन्मूलन, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, रेल सुरक्षा और जीरो एफआईआर के क्रियान्वयन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार की नई दिशा, नई पहल नीति से प्रभावित होकर हार्डकोर नक्सली अजय महतो की कुख्यात नक्सली पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गिरिडीह में आज पत्रकारों से बातचीत में एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य के कई जिलों की पुलिस को बबीता की 18 मामलों में तलाश थी।
1: 2009 से ये एक्टिव रही है काफी छोटे समय से, और 2017 से इनको एरिया कमेटी की जिम्मेवारी दी गई, जो ना केवल गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में एक्टिव थी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इनको अन्य जगहों पे भी भेजा जाता था और ये जाती थी।
0: रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस ने रामगढ़, हजारीबाग तथा बोकारो जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 7 बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार लोगों में इस गिरोह का मुख्य सरगना भी शामिल है।
2: विगत रात्रि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया। रोकने के क्रम में उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया, उसे पकड़ के पूछताछ की गई तो उनके द्वारा चोरी की बाइक का इस्तेमाल करने और चोरी की बाइक के साथ जाने की बात बताई गई। अग्रतर पूछताछ में उनकी निशानदेही के आधार पर कुल 6 अन्य बाइक, टोटल 7 बाइक को बरामद किया गया है।
0: राजधानी रांची में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हरमू चौक पर सड़क किनारे लगाई गई 20 से अधिक अस्थायी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। रांची के नवीन पुलिस केंद्र में दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ आज एडीजी मनोज कौशिक ने किया। 23 जुलाई तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पुलिसकर्मी एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और कबड्डी में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का समापन समारोह 23 जुलाई की शाम 5 बजे होगा, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, 49 प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का है संवैधानिक अधिकार। कल राज्यभर में सभी बूथों पर लगेगी चुनावी पाठशाला। रिम्स शासी निकाय की बैठक संपन्न, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रिम्स को देश के बेहतर चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में लाने के लिए किया जाएगा काम। झरिया में समन्वित पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कल नई दिल्ली में संबंधित पक्षों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। और रांची के नवीन पुलिस केंद्र में दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: हजारीबाग में युवाओं की टोली ने मॉनसून को देखते हुए 60 ट्रैफिक पुलिस को बरसाती उपहार स्वरूप प्रदान किया है। जिला के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार कहते हैं,
2: बरसात को देखते हुए यह कार्य किया गया है ताकि ट्रैफिक के जवानों को काम करने में थोड़ी सहूलियत। ट्रैफिक का काम काफी टफ है और जवान जो है लगातार दिन भर खड़े रहते हैं और बरसात, धूप और गर्मी, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, ये लगातार अपना ड्यूटी करते हैं। और ये सेंसिटिविटी दिखाना यूथ विंग की तरफ से कि इनको कुछ मदद की जाए और इनके कार्य में सहूलियत हो, इसकी हम सराहना करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
1: सांसद मनीष जायसवाल द्वारा संचालित सांसद तीर्थ यात्रा का एक साल पूरा हो गया। नमो श्राद्ध किट जो हजारीबाग सदर विधानसभा में वितरण होता था, अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में वितरित किया जाएगा। रांची से पहुंचे भाजपा के संगठन मंत्री करमवीर सिंह ने सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं,
3: का मनीष जी ने जो व्यवस्था बनाई है, 25 किलो चावल है, आटा है, दाल है, मसाला है, तेल है, सब मिलाकर छोटा सा एक पैकेट, और इस सेवा के काम के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हजारीबाग नहीं तो सभी पंचायतों में जाकर के, मंडलों में जाकर के रखना और वहां से जिनकी जरूरत है उनको ले जाने का काम करना, ऐसा एक बड़ा काम प्रारंभ किया है।
1: हजारीबाग में पहली बार इस्कॉन की ओर से जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। आयोजक ने बताया,
4: डिजाइन जो रथ यात्रा हुआ है, अलग अलग भक्तों जो IIT पढ़े हुए हैं, जैसे कि मुंबई के भक्तों, खड़गपुर और कलकत्ता के भक्तों द्वारा मिल के रथ का डिजाइन किया गया है। आप ये रथ जो देखिएगा, ये अलग टाइप का रथ है।
1: हजारीबाग में शिल्पोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हस्तशिल्पकार उत्पाद लेकर पहुँचे। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बताया,
5: तो हमारे जितने भी मेहनत कर, हमारे जितना भी उद्यमी यहाँ लगे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जैसे पुराना संग्रहालय भी रो रहा है, वहाँ बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। या झारक्राफ्ट बीमार हो गया है, उसको अगर जीर्णोद्धार करके बढ़िया से उसको बनाया जाए, तो वहीं भी इन लोग सारे लोग अपना अगर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन लोग का जो धनोपार्जन का स्थिति है वो बेहतर हो पाएगा और लोग कोई हतोत्साहित नहीं होगा।
1: पूरी घर योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लेकर हजारीबाग में केंद्र का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल ने किया।
6: बिल कम हो जाएगा वो तो एक फायदा है, इसका दूसरा फायदा है कि जो पावर कट का झंझट जो है उससे भी आप, ये बहुत फायदे का चीज है। सभी से अपील करेंगे कि अपने अपने घर पे लगाएं।
1: हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर में SIR की प्रक्रिया जारी है। हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती बताते हैं,
7: पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने वॉलेंटियर्स रखे हुए हैं। अगर वॉलेंटियर्स भी आपका सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में भी हम लोगों ने 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक एक सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। उन सहायता केंद्रों में जाकर के आप अपना फॉर्म भरवा करके और उसको BLO के पास सबमिट कर सकते हैं।
1: मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए SIR करवाया जा रहा है। इसका मकसद फर्जी और बाहरी मतदाताओं को हटाकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। इसलिए जिम्मेवार नागरिक बनकर SIR की प्रक्रिया में हिस्सा ले। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
0: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और हम पेश कर रहे थे फिल्म मर्डर 2 के गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, मेदिनीनगर का सफरनामा। वार्ताकार हैं गोकुल बसंत।
1: मेदिनीनगर का सफरनामा। आज हम जिस शहर को मेदिनीनगर के नाम से जानते हैं उसका पुराना नाम डाल्टनगंज है। इस शहर को 1862 में छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल डाल्टन ने सुनियोजित तरीके से बसाया था। तब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था। उस दौरान इस इलाके में विद्रोह ज़्यादा तेज और असरदार था। प्रशासनिक इकाई नहीं होने के कारण अंग्रेजों की पकड़ ढीली थी। ऐसे में इस इलाके में अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रशासनिक इकाई की स्थापना की ज़रूरत थी। इसके लिए कर्नल डाल्टन के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने पहले अमानत नदी किनारे स्थित तरहसी का चयन किया, मगर कई कारणों से इसे खारिज कर दिया गया। बाद में लेस्लीगंज, जहां छावनी थी, का चयन किया गया, मगर इसे भी व्यवहारिक नहीं माना गया। और अंततः कोयल नदी के तट पर स्थित बिजराबाग नामक स्थान का चयन किया गया और अनुमंडलीय मुख्यालय की स्थापना की गई। उस समय बिजराबाग जंगल झाड़ था, जिसे साफ करके सुनियोजित ढंग से शहर बसाया गया। सरकारी कर्मियों के अलावे दूसरे क्षेत्रों से व्यापारियों और अन्य पेशेवर लोगों को बुलाकर लीज पर जमीन देकर बसाया गया। शहर का नाम कर्नल डाल्टन ने अपने नाम पर डाल्टनगंज रखा। कर्नल डाल्टन ने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने का काम किया था। उसी के नेतृत्व में नीलांबर पीतांबर के गांव चेमूसनिया में ब्रिटिश फौज ने हमला किया था। हालांकि नीलांबर पीतांबर और उसके क्रांतिकारी साथियों को पकड़ने में वह सफल नहीं हुआ था, मगर उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। कर्नल डाल्टन पर नीलांबर पीतांबर को फांसी पर लटकाने का भी आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि चेमूसनिया में एक सप्ताह कैंप करने के दौरान वह बीमार हो गया था और वापस कमिश्नरी मुख्यालय लोहरदगा लौट गया था, जबकि नीलांबर पीतांबर करीब एक साल बाद स्थानीय जमींदारों की साजिश से पकड़े गए थे और आनन फानन में उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस कारण आम जनता उसे क्रूर अंग्रेज शासक के रूप में याद करती है। आज़ादी के बाद से ही डाल्टनगंज शहर का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई थी। आनंद मार्गियों ने डाल्टनगंज का नाम बदलकर पलामू के प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम पर रखने की मांग सबसे पहले की थी। इतना ही नहीं, आनंद मार्गियों ने इसके लिए दीवार लेखन से लेकर पोस्टरबाजी भी शुरू की थी। वहीं कई लोगों ने स्वतंत्रता के प्रतीक, राजतंत्र के प्रतीक मेदिनी राय की जगह जिले के नाम पर पलामू रखने की मांग की। इसके लिए उस समय के चर्चित लेखक पत्रकार रामेश्वरम के नेतृत्व में डाल्टनगंज नाम बदलो समिति का भी गठन किया गया था और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। वहीं कुछ लोग इसका नाम नीलांबर पीतांबर नगर रखने की वकालत कर रहे थे। उनका तर्क था कि नीलांबर पीतांबर 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे मजबूत स्तंभ थे, इसी कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी पर लटकाया था। ऐसे में इन शहीद भाइयों के नाम पर शहर का नाम रखना उचित रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें और उनके अमर संघर्ष को याद रख सके। वहीं कई लोग नाम बदलने के विरोध में भी खड़े थे, ऐसे लोगों का तर्क था कि कर्नल डाल्टन ने सुव्यवस्थित ढंग से एक उजड़े इलाके को शहर में बदलकर ऐतिहासिक काम किया है, इतिहास बदलना उचित नहीं। डाल्टनगंज नाम हमेशा लोगों को अंग्रेजी शासन और उसके खिलाफ जनता के संघर्ष की याद को दिलाएगा और आने वाली पीढ़ी को सतर्क रखेगा। इन तमाम तर्कों के बीच बिहार सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और डाल्टनगंज नाम यथावत रहा। इस बीच 1862 में स्थापित डाल्टनगंज शहर 1892 में अनुमंडलीय मुख्यालय से जिला मुख्यालय बन गया और ठीक इसके 100 साल बाद 1992 में प्रमंडलीय मुख्यालय बन गया। उसी साल पलामू जिला से अलग कर गढ़वा को अनुमंडल से जिला बनाया गया। सन 2000 में बिहार से अलग कर छोटा नागपुर संथाल परगना को झारखंड नाम से अलग राज्य बनाया गया। इसके बाद पूरा पलामू प्रमंडल झारखंड राज्य का हिस्सा बन गया। इसके साथ ही डाल्टनगंज शहर का नाम बदलने की मांग फिर से तेज हो गई। झारखंड विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष और डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंदर सिंह नामधारी और झारखंड सरकार के मंत्री पांकी के विधायक मधु सिंह भी पहले से ही डाल्टनगंज का नाम बदलने के प्रबल समर्थक रहे थे, इसलिए यह काम आसान हो गया। सन 2002 में डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया, मगर यह काम अभी भी आधा अधूरा ही है क्योंकि केंद्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। ऐसे में डाकघर समेत अन्य केंद्रीय संस्थानों के नाम के साथ डाल्टनगंज ही लिखा जाता है। इस तरह देखा जाए तो डाल्टनगंज मेदिनीनगर तक का शहर का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। अब चेरो वंश के उस प्रतापी राजा मेदिनी राय के बारे में भी जानना जरूरी है जिसके नाम पर डाल्टनगंज का नाम मेदिनीनगर रखा गया है। मेदिनी राय को चेरो वंश का सबसे प्रतापी और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है।

इनके राज्य में सुख समृद्धि और शांति की बात कही जाती है। भगवंत राय के पुत्र मेदिनी राय को 1662 में राजा बनाया गया था और वे करीब 13 वर्षों तक यानी 1674 तक राजा रहे। उस समय देश पर मुगल शासक शाहजहां का शासन था। अकबर के ज़माने में पलामू रक्सेल राजा मानसिंह के कब्जे में था। अकबर ने ही उन्हें पलामू की कमान सौंपी थी। जब तक अकबर शासक बना रहा, चेरो राजा पलामू पर अपना अधिकार नहीं जमा पाए, लेकिन 1605 में अकबर की मौत के बाद मानसिंह को खदेड़कर चेरो राजा पलामू पर काबिज तो हो गए, मगर कभी शांति से राज नहीं कर पाए। मुगल सेना के बार बार हमले के कारण राज्य अस्त व्यस्त रहा, जनता भी परेशान रही। इस तरह मुगल सेना और चेरो राजाओं के बीच रुक रुक कर संघर्ष चलता रहा। दरअसल मुगल शासकों द्वारा कर की वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हर बार हारने के बाद चेरो समझौता करते थे और मुगल सेना के वापस लौटते ही बदल जाते थे। 1661 में बिहार के गवर्नर दाऊद खान ने एक बड़ी फौज लेकर पलामू किला पर हमला किया। हमला इतना ज़बरदस्त था कि पलामू के तत्कालीन राजा अनंत राय इसे झेल नहीं पाए और अपनी बचाव के लिए परिवार के साथ जंगल में भाग गए। मगर दाऊद खान ने चारों तरफ घेराबंदी कर रखी थी, इसके कारण अनंत राय पकड़े गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद समझौता हुआ और अनंत राय ने कर देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद 4 महीने के लिए भोपाल राय को राजा बनाया गया। इस बीच 4 महीने तक दाऊद खां की सेना यहीं डटी रही। दाऊद खां की सेना के लौटने के बाद 1662 में मेदिनी राय को राजा बनाया गया। मेदिनी राय के कार्यकाल में मुगलों के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ, इसलिए राज्य में शांति व्यवस्था कायम रही, राज्य का विकास भी हुआ। मेदिनी राय ने मुगलों से संघर्ष की चेरो वंश की पुरानी नीति को त्याग दिया। उन्होंने मुगलों से समझौता कर चलने में ही अपने राज्य और अपनी जनता की भलाई समझी और इस नीति पर कायम रहे। हाँ, उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए अपने पड़ोसी राजाओं से युद्ध किया, उन्हें पराजित कर अपने अधीन किया। उन्होंने छोटा नागपुर के महाराजा को भी पराजित कर दिया था और उनके राजमहल के खूबसूरत गेट छोटा नागपुरी दरवाज़ा उखाड़कर पलामू किला में लगवा दिया था। इसे आज भी पलामू किला में जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा जा सकता है। मेदिनी राय के कार्यकाल में पलामू का राज गया, हजारीबाग और सरगुजा तक फैला हुआ था। राज्य में अमन चैन थी, लोग सुख चैन के साथ जीवन गुजार रहे थे। मेदिनी राय के बारे में कहीं कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके बारे में किंवदंतियाँ अधिक प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है, राजा मेदनिया घर घर बाजे मथनिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पलामू आरंभिक काल से ही पशुपालकों का इलाका रहा है। ऐसे में मेदिनी राय के कार्यकाल में शांति स्थापित होने के कारण पशुपालन के धंधे में इजाफा हुआ होगा। ऐसे आज भी जंगली और पहाड़ी इलाकों में पशुपालन एक मुख्य व्यवसाय बना हुआ है। किसी महान पुरुष का नाम अपनाना ही काफ़ी नहीं है, उसके सद्कर्मों को अपनाना भी जरूरी है। उम्मीद है मेदिनी नगर नाम की वकालत करने वाले राजनेता, संगठन, जनता और नौकरशाह मेदिनी राय के पदचिन्हों पर चलते हुए शांति और सद्भाव कायम कर इसके सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर रहेंगे।

नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आप नहीं बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी।

0: उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी ऊषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने

हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमनपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: कली मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
5: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
6: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
7: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
8: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
9: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET, on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
10: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister Dr. Jitendra Singh informed that the government accepted the demand of holding discussion over the matter. However, the Union Minister said that when the government's stand was conveyed to the Congress leader, Mr. Gandhi backtracked from his earlier stance and added more demands.
2: Then I told him, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. It's very unfortunate the leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this, particularly so when this morning itself Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible for the paper leakage episodes will go scot-free. Not only that, he went on to say that the severest punishment would be accorded to the persons who are found involved in this.
10: Later, senior Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav and other opposition party members were detained by Delhi police during the protest near Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Our correspondent has the details.
11: The proceedings of both the Houses of Parliament were marred by the repeated adjournments for the second consecutive day of the monsoon session. Both the Houses were adjourned thrice following opposition uproar. The opposition parties were sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. Due to the disruptions, question hour and zero hour in both the Houses could not be taken up. In the Lok Sabha, Speaker Om Birla and subsequently the presiding officers repeatedly urged the protesting members to maintain decorum in the House and allow it to take up listed business. But as the pandemonium continued, the House had to be adjourned again and again. The scene was also no different in the Rajya Sabha. Despite repeated appeals by Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan and Deputy Chairman Harivansh, the protesting members continued with their sloganeering, leading to adjournments of the House. With Suparna Sakia, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
10: Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House Complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country.
12: Paper leak ka khabar aaye, turant sarkar ne karwai kiya.
13: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail to ensure that the future of students was not affected.

0: मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालका मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलों पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हिराफ करने का इल्जाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखनांदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलों पर नारेबाजी कर रही थीं। रखनांदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात और वक्फा सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए और वहां दाखिल जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज कहा है कि हुकूमत तालीम के शोबे में इस्लाहात की खातिर अहद बस्ता है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बात करते हुए जनाब पासवान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी शोबों में इस्लाहात की जरूरत पर मुसलसल जोर देते रहे हैं, जिसमें तालीम का शोबा भी शामिल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सभी वजारतों में इस्लाहात की जा रही है। जनाब पासवान ने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो अपनी तामीरी तजावीज पेश करे और बामानी बातचीत में शामिल हो।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोना

0: वांगचुक को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से फौरी तौर पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि एंगमो की दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत के दौरान यह हुक्म दिया। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और शुमाली मकदूनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़िराद, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सियाहत, जियाफत और फिल्म साजी जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने समेत तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर राजी हो गए हैं। सदर जमहूरिया आज स्कोपिये में शुमाली मकदूनिया की अपनी हम मनसब गोरदाना दवकोवा से बातचीत के बाद मीडिया से खिताब कर रही थी।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इत्तेहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसी भारत की क्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गोडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा खत्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफर करेंगी। मध्य प्रदेश असेंबली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसां सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असेंबली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: यकसां सिविल कोड यूसीसी के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में एनएचपीसी हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेरे तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीराजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरतेहाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकायक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंभों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान एनडीआरएफ की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुर्मुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने भारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुर्मुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताजा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाजे पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज एमवी गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें जाये हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी अथॉरिटी ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदाम में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने यह खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरकी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटें पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले एफआईएच आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहिरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसां सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आबनाए हुर्मुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Money Talk.

ऐसी आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।
1: यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वो

0: तख्ता है।
1: विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे झारखंड।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। बिसरता नहीं वो वक्त, बिसरता नहीं वो चेहरा, भूलती नहीं वो आंखें जिनमें थी मोहब्बत की नदी। उठाई उन्होंने जो पलकें तो धूसर बादल आसमानी हो गए। कहा उन्होंने जब कुछ तो पहाड़ों पर उतर आई नरम धूप। जब एक दूसरे की नजरें मिलीं तो सैकड़ों फूल एक साथ खिल गए। चांद की परछाई ने धरती को रोशन कर दिया।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, चुनिंदा फिल्मी नगमे।

सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Reshma Tiwari. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. Union Health Minister J.P. Nadda today visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi and reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister also held a meeting with the doctors at the hospital. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who are admitted there. Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. They were protesting over the NEET paper leak issue. BJP today criticized leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for staging a protest at Lok Kalyan Marg, saying that the conduct displayed by him is entirely unbecoming and condemnable. Talking to the media in New Delhi, BJP President Nitin Naveen said that today's incident is unfortunate and termed it a dark day in India's political history. He also said that when the government accepted the conditions of the Congress on the NEET paper leak issue, Rahul Gandhi backtracked from his earlier demand, which reflects his immaturity. Mr. Naveen also appealed to the opposition parties, including the Congress, stating that the government is ready for any kind of discussion in Parliament. He added that the people of the country stand with Prime Minister Narendra Modi. President Draupadi Murmu today said India and North Macedonia have agreed to enhance trade and investment while expanding cooperation in key sectors. President Murmu was addressing the media in Skopje after holding talks with her North Macedonian counterpart Gordana Sihanouska Davkova. Later, addressing the Assembly of North Macedonia, President Murmu conveyed the goodwill of 1.4 billion Indians. She described North Macedonia as an important partner in building a stable, multipolar and prosperous global future. After concluding her visit to North Macedonia, she will travel to Romania. Hockey India has announced the 20-member squad for the upcoming FIH Men's World Cup in Belgium and the Netherlands to be held from the 15th of next month. Ace defender and drag flicker Harmanpreet Singh will lead the Indian side. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं. हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं. समाप्त होती है हमारी आज की सभा. प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. जय हिंद.